फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: I love FM 101. 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

0: Alrighto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum, and of course, Assalamu alaikum, Ahle Pakistan. Janab se mukhatib, aapka host, aapka dost, DJ Sahil, signing in. Aur janab, kaise aap tamam log, yakeen theek thaak hai, fit time, miss?
1: I am doing well.
2: आप यहाँ जिस कॉर्नर पे रेडियो पाकिस्तान के हमारा ये स्टूडियो है और कहाँ पार्किंग है
1: ब्रो मैं जाऊंगा
2: नहीं रहने दे प्लीज ये नहीं नहीं
1: क्योंकि वो अलग बात है कि तुमने गाड़ी में कोई स्पेशल चीज रखी है जो हमें खिलाना नहीं चाहिए
2: नहीं मैं आपको ये कह रही बल्कि आप ये सोचें कि ये इतना लंबा डिस्टेंस है कि मैं आपका ये आप जो मेरे लिए कर्टेसी करेंगे ये मेरे लिए एहसान कंसीडर होगा जो मैं कहते नहीं कर
1: अच्छा पता है इसकी मैं आपको जो यहाँ से सफर है ना बाहर तक का इसके बारे में मैं इतना बता दूं लोगों को कि खुदा ना खास्ता जब कभी कोई जलजले वाला सीन होता है ना तो मैं यहाँ पे सबको कहता हूँ भाई भागना ऐसे भागना है फिर देखना नहीं पीछे कौन रह गया क्योंकि यहाँ से निकलते हुए 1.5 मिनट लग जाते हैं आपको बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए
2: एक्चुअली
1: और मेरा एक्सपीरियंस तो 2005 के जलजले का रहा है इस बिल्डिंग के नीचे तो बाहर निकल ही नहीं सके थे हम तो यही फंस गए थे बीच में दरवाजे वगैरह वो हो गए थे और एकदम हम लोग रुक गए ना हमारी एक प्रोड्यूसर थी वो भी यहाँ पे थी एंड शी इज ब्लाइंड एक्चुअली तो उस वक्त से हम फिर बाहर भी नहीं निकल सके तो उनके डर में भी कि इनको कैसे छोड़ के जाए तो वो फिर हम अंदर ही रह गए लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जो है वो कितना मुश्किल
2: है एक बार रात हो गए बाहर जा नहीं सकते
1: यस बीच में भी अभी एक दफा जो है वो इस तरह से अर्थक्वेक का सीन हुआ था तो मैं रनीन और हमारी कोऑर्डिनेटर हैं बड़ी अच्छी रुबाब हम तीनों बैठे हुए थे और अचानक से बहुत तेज जो है बिल्डिंग वाइब्रेट हुई और हम भागे बाहर वो रुक भी गया चला भी गया जलजला भी सो गया होगा जाके कहीं हम लोग तो बाहर ही निकल पाए मतलब इतना यहाँ से वो होता है तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह बचाने वाला है जी
2: अभी भी आप देखें ना मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं चाहे हम जापान की बात करें या हम बात कर रहे थे अभी थाईलैंड में आई थिंक कुछ था थोड़ा सा ये जलजले का जैसे अल्लाह तो कितना मेहरबान है वाकई आप क्योंकि आई थिंक 2005 में आया था ना 8 अक्टूबर को
1: सो अब मैम सदफ की बर्थडे पे
2: ओह माय गॉड ये कहना जरूरी तो नहीं था
1: बस हम तो मैम को ये कहते हैं बड़ी खतरनाक बर्थडे आपकी हम तैयारी करके बैठे हुए थे कि हमने बहुत अच्छे सेलिब्रेट करनी है अच्छे से उन दिनों ना हमारा बहुत ज्यादा वो था हम सेलिब्रेशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी सेलिब्रेशंस में
2: सही वैसे क्योंकि आपने जिक्र किया है ना सेलिब्रेशंस उस वक्त बहुत ज्यादा होती थी आपने देखा नहीं अभी चीजें बहुत मुख्तलिफ हो गई इस दौर में जिस हाल में हम मौजूद हैं
1: हाँ जी
2: उस तरह से लोग एक दूसरे को सेलिब्रेट नहीं करते
1: आजकल जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज है ऑनलाइन दैट्स इट आपको एक मैसेज करते हैं दैट्स इट बस हो गया यार
2: अरे वो भी लोग कहते हैं मेहरबानी समझे कि किसी ने आपको याद रखा आपके लिए टेक्स्ट लिखा बड़ी खूबसूरत बात है कि आप मैसेज करते हैं चीजें लेकिन वो जो अभी आप रेफरेंस दे रहे थे मैं उस वक्त में तो मौजूद नहीं थी लेकिन मेरे दिमाग में पूरी तस्वीर बन गई कि वो क्या लम्हा होता होगा जब इकट्ठे सब बैठते होंगे
1: हाँ जी।
2: क्योंकि अचीवमेंट्स है ना साहिल इस वापस बात पे आएंगे सेलिब्रेशंस वाली बात से मैं कुछ जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने गाड़ी जो है खरीदी है सो हम उनके घर दावत पर गए क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं बन्नू से तो उनको लेकर हमें जो है मेरी फैमिली को और उस फैमिली को हमने लेकर वहाँ पर गए एंड आई वाज द ड्राइवर क्योंकि मैं पार्ट टाइम अपने घर में
1: ड्राइवर
2: की खिदमत पे अंजाम देती हूँ मैं आपको बड़ी एक वियर्ड चीज़ बताने वाली हूँ देखिए हसद के बारे में हम सब जानते हैं नजर तो मतलब मुझे लगता है लिटरली ये बरहक है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं
1: बड़ा ब्रश करती
2: सो हम उनके यहाँ गए हमारा मतलब वहां पर डिनर था डिनर करके साहिल हम निकले हैं मेरी गाड़ी A1 मेरे घर से कुछ 5-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम पहुंचे हैं तो गाड़ी ने ना झटका लिया इट्स लाइक नॉर्मल मतलब कहते हैं कि आप 0 मीटर गाड़ी भी निकालेंगे रोड पर लेके आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम निकल आती है आपने हम सब ने अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना कि चलती हुई चीज़ है मशीनरी है तो मैंने कहा ठीक है कुछ हुआ होगा साहिल फॉर 30 मिनट्स मतलब जैसे उसे में जाके गाड़ी रोकी 30 मिनट हम ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं गाड़ी में क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा
1: उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई
2: नहीं हमने ये तय किया कि अब गाड़ी हम यहाँ पर रखेंगे हम खवातीन है सारी हमारे साथ बच्ची है हमने कहा हम जो है वो टैक्सी कराएंगे हाँ कैब करा के हम तो घर जा रहे हैं और जैसे ही मैं सोच रही हूँ कि मैं उतरी हूँ मैं बोनेट बंद करूँ तो वहां से एक आदमी मतलब एक बाइक पे दो आदमी थे कुतरा कहता मैडम कोई मसला मैंने कहा सर मसला दैट वॉज माई वर्ड्स, मैं अभी रिपीट, मैंने कहा सर प्रॉब्लम तो है लेकिन अब ये सुबह ही होगा. कहता मैडम मैं कुछ मदद कर सकता हूँ. मैंने कहा सर पता नहीं चल रहा, बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, झटका लेती है जब मैं उसको गियर देती हूँ. कहता अच्छा ठीक है आप स्टार्ट कीजिएगा. स्टार्ट किया तो वो गियर नहीं ले रही. कहता है अजीब सी बात है. मैंने कहा सर आई डोंट नो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा. मैं भी काफ़ी अरसे से गाड़ी चला रही हूँ, समझ इसी तरह इंसान सीखता है. कहता आप पूरा ना माने मैं आ जाऊँ. मैंने कहा सर आप आए क्योंकि पेट्रोल पंप था, लोगों की रश थी, पेट्रोल लोग डलवा रहे हैं, तो मैं सेफ थी, मेरी फैमिली सेफ थी कि चले जो भी है यहाँ पर लोग मौजूद हैं. वो ड्राइविंग सीट पे आया, उसने देखा, वो वापस गया बॉनेट में, उसने पता नहीं क्या किया होगा. विद इन एक मिनट से डेढ़ मिनट में कहता मैडम चलाएं. मैंने कहा सर अब तो चल गया. कहता मैं मैडम वापस बैठूँ. मैंने कहा बैठें. उसने गाड़ी ली, टर्न मतलब यू टर्न लेके रोड की तरफ गाड़ी की. कहता मैडम कुछ भी नहीं है, कुछ तारें उलझी हुई थी तो शायद वहाँ पर तारों का मसला होगा, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैं दिल में ये सोची भाई अभी तो लिए प्रॉब्लम आ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं था. वो नजर थी वो उतरी. मैं बताना ये ना मुझे, मैं सो आदमी. मैंने कहा सर आप कुछ पैसे ले, आपने इतनी मुश्किल में जो है हमारी मदद किया. कहता मैडम मेरी अपनी वर्कशॉप है, मैं बिल्कुल इस हवाले से कि मुझे आपसे पैसे मिलेंगे, मैंने आप लोग की हेल्प नहीं की, आप खवातीन खड़ी थी इसलिए मैंने आपकी हेल्प. और यहाँ पर दो चीज़ें जो मुझे समझ में आई आज से चार रोज पहले, जो मैंने ज़िंदगी में अब सीख लिया, अब हमेशा मेरे साथ गिरा बंदी है मेरी ज़िंदगी में. एक तो नज़र लगती है, जो मैं आपको पता अक्सर मैं कोई चीज़ इस तरह से डिस्कस नहीं करती, नज़र. दूसरा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह आपके लिए फरिश्ते बनाता है और वो इंसानों की सूरत में भेजता है. वो आदमी न जाने कहाँ से आया, कहाँ चला गया, हम 30 मिनट खड़े रहे, कोई मदद नहीं मिल रही, वो ऑल ओवर सडन आता है. उससे जब 100 बाइक्स वहां से गुजर गई थी पेट्रोल डलवा के 30 मिनट में, ठीक है, वो आदमी आता है, खुद रुकता है, बोलता है, कहता है गाड़ी में पता नहीं क्या, कहता कुछ भी नहीं मैडम तारे उलझी हुई थी तो मैंने ऐसे बस कर. And I was like, मेरा अल्लाह तो कितना मेहरबान है, पता नहीं मैंने, मेरी वालदा ने, मेरी बहन ने, मेरी खाला ने, हम में से किसने किस लम्हे किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा कि किसी का तो वो किया हुआ आज हमारे सामने आया ना, अल्लाह ने दिया.
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: I love FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: स्मृति के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम फैन को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, उसके दिन दरमी याद चौधरी तरक्की पर फरमाए। आमीन। तो मानो साया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे। क्यों जी, कोई शक है क्या?

0: Ele vale solo y te ve.
1: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन व सलामती के लिए तीनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुतफिका अजम का आकाश है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगो में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई में 7 ख्वारिश को हलाक कर दिया है। हुकूमत ने आज से अगले 3 रोज के लिए पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी की है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पाना अमन सलामती के लिए तीनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का अक्कास है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई में 7 ख्वारिश को हलाक कर दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान ने सूडान में तालीम के तहफ्फुज़ के लिए फौरी बैनुल अक़वामी इकदामात करने का मुतालबा किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए। इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पाना अमन सलामती के लिए तीनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का अक्कास है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगो में खुफिया इतलाक की बुनियाद पर कार्रवाई में 7 ख्वारिज को हलाक कर दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान ने सूडान में तालीम के तहफ्फुज के लिए फौरी बैन अलावामी इकदाम करने का मुतालबा किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: हैं हुसैन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: We'll be right.
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: सजनों ते बेलियो मैं जली जफर
1: जफर
0: तुसी सुनदे पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल एफएम 101 मेरा मतलब है एफएम 101
2: आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: सजड़ो तो बेलियो मैं जली जफर तुसी सुनने पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल एफएम इको एक मेरा मतलब है एफएम वन वन
1: आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

जी, जनाब जी आए नो कहने वेलकम ते खुश आमदी। तुसी सुन रहे देसी बीट रेडियो पाकिस्तान 101 FM दे लाहौर स्टूडियो तो थोड़े नाल मुखातिब ते मौजूद है ज़ैनब अरशद। हुण तो लैके ठीक दस ठीक ठीक 3 बजे तई रहण वाला थोड़ा साडा साथ। मज़ेदार गल है वे कि अज दे प्रोग्राम च असी एक मुबारकबाद भी देनी है, एक हैप्पी बर्थडे जिहड़ी उह वी विश करनी है। ऐसा करांगे कि जिस वेले सानू अंदाज़ा होएगा कि सुनन वाले सानू सुन रहे ने उस वेले असी विश भी कर देंगे ते बर्थडे विश भी कर देंगे। ठीक है जी, जिहड़े भी बच्चे स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया है जी, नतीज बेहतरीन आए, एक दो रिजल्ट जनाब मैं वेखे ने, रिजल्ट कार्ड वेख के दिली मैं खुशी हुई है। बच्चे जिस वेले मेहनत करते हैं तो उसका फल जिस वेले मिलता है तो यकीन मनो बड़ा ही चंगा लगता है। रब ताला सब नू कामयाब करे। अगर नंबर जड़े ने थोड़े मुताबिक नहीं आए, तुसी समझते हो कि 30-50 नंबर घटने हैं जिन्हें तुसी सोचे हुए सी उस तरह नहीं आए, बिल्कुल भी दिल छोटा ना करिया करो। कामयाबी अगर नसीब हुंदी है तुसी अगली क्लास च प्रमोट हुंदे हो तो मेरे ख्याल च इस तो बेहतरीन कोई गल नहीं होनी चाहिदी। उन्हां पेरेंट्स नूं भी मैं इहो रिक्वेस्ट करांगी कि जिन्हां दे बच्चे 700-800 नंबर लैंदे ने ते पेरेंट्स कहंदे ने कि असीं तुहाडे कोलों नाराज़ हाँ, असी सोचते सी थोड़े इन्ने नंबर आने ने। एक आध दिन वेला भी मेरी किसी नाल गल हुई तो उन्हें कहा जी बच्ची ने माशाल्लाह 727 नंबर ले, तो उन्होंने बाबा जोड़े सन थोड़े जे नाराज सन, थोड़े जे खफा सन। फिर जिस वेले मैं दसिया गया कि इन्ने नंबर आए ने तो मैं पूछया कि उन्होंने बाबा जे नाराज ने तो उन्होंने को पुछो कि तुम किन्ने नंबर ले जो तुम फर्स्ट ईयर च सी। उन्हें क्या हाँ ये सवाल है। सो कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बच्चों हमेशा हौसला देना चाहिए कि कोई गल नहीं जी, उन्होंने नाल खिलौना चाहिए। अगर असी इंज करेंगे तो बच्चे जड़े ने किस तरह अगे बढ़ने, किस तरह मजीद मेहनत करेंगे, वो तो एक डिप्रैशन का शिकार हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे।

जनाब जी आए कहने वेलकम तो खुश आमदीद देसी बीट प्रोग्राम का ना है कदर खो देता है रोज़ का आना जाना इस हवाले की कहोगे कि रोज़ किसी मुलाकात करके गलबात करके रबते च रह के थोड़ी वो कदर नहीं रही अहमियत नहीं रही या फिर तुम समझते हो कि तालुकात जड़े ने बेहतर रेंदे ने तालुकात की मजबूती वास्ते पायदारी वास्ते बेहतरी वास्ते ऐसा होना चाहिए है। मौसम बरसात की गल करिए ते इस मौसम च खास तौर पर बाहर के जड़े खाने ने ना उन्हें तो मुकम्मल परहेज़ करो। अगर तुसी फूडी हो बहुत ज़्यादा खाण पीण दे शौकीन हो तो कोशिश करो कि साफ खाना बनाओ हेल्दी फूड बनाओ घर बनाओ थोड़ी जी मेहनत कर लो लेकिन घर का बनया हुआ खाना खाओ खास तौर पर इस मौसम च। शदीद गर्मी तो बाद अगर बरसात की गल करिए तो वाकई बरसात की आमद एक नेमत तो घट नहीं होंगी रिमझिम होंगी है तरो ताज़ा हवा होंगी है ये बाजोकात मौसम ही हालात जड़े ने कुछ सख्त भी हो जाते हैं जिन्हों का बराह रास्त असर साड़ी सेहत पर भी पैंदा है। गर्मी की शिद्दत तो बाद हुण बरसात के दरम्यान जिस वेले मौसम तब्दील होया तो साड़ी जिस्मानी कुवत मुदाफियत जी है ना उसके मुताबिक उन्होंने टलन च थोड़ा जहा वेला जड़ा दरकार होंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है कुदरत का निज़ाम है जी इहदे दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही वरतना अगर तुसी ऐसा करोगे तो तुसी समझोगे कि हाँ बई ये तुसी ठीक नहीं किया क्योंकि बहुत सारिया बीमारियों का असी सबब भी बन सकते हैं। सब तो पहला कदम जिहड़ा होना चाहिए है साड़ी सेहत की तरफ होना चाहिए है। इस मौसम च पहले तो असी थानू ताकीद की है कि खाने जिहड़े ने ना बाहर दे उन्हां तो मुकम्मल परहेज़ करो पानी के हवाले नाल साफ सुथरा पानी जिहड़ा वो पियो पानी उबाल कर अगर तुसी पी सकते हो थोड़ी जी मेहनत तो होंगी है थोड़ी जी एफर्ट होंगी है तो ये तो गुरेज ना करो। बहुत छोटे बच्चे जड़े ने छेती मुतासर हो जाते हैं उन्होंने खास ख्याल रखो बारिश बच्चे नहाना पसंद करते हैं भिजना पसंद करते हैं तो ये कोशिश होंगी है मावां की कि रोक पाण उन्होंने इसलिए उन्होंने सेहत बख्श गज़ा जी जरूर दो। बच्चे जड़े ने कुछ सूप भी पसंद करते हैं लिहाजा इस मौसम च सब्जी ते चिकन वाला मिक्स सूप अगर तुसी थोड़ा जहा उन्होंने पिया सको तो वो मामला जड़े ने बेहतर रहेंगे। बरसात का मौसम अगर यदि गल करिए तो सानू महदूद कर देता है बिल्कुल ऐसे लिमिटेड सानू कर देता है चहलकदमी करना या फिर पार्क च जाना बच्चे तो बजुर्ग जड़े हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं सारी रूटीन जी चेंज हो जाती है लिहाजा जिस वेले सारिया चीज़ा असी चेते रखते हैं सोचते हैं तो ये साड़ी जिम्मेदारी जी भी बढ़ जाती है कि असी किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना है किस तरह सारे मामलात नू वेखदा है। इहदे हवाले नाल मजीद भी गल्लां बातां प्रोग्राम का असी हिस्सा बनावांगे। बहुत सारे मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया जी परवीन साहिबा साढ़े नाल मौजूद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम परवीन साहिबा ने कहा है कि की गल है अज मैसेजेस पढ़न का इरादा नहीं है इरादा ना हुंदा ते थोड़ा ना शामिल ना हुंदा हैं जी। ब्यूटीफुल मिली नगमा यार परदेसी सानू कह रहे ने बहुत शुक्रिया जी हमारा बेग प्रोग्राम च शामिल होइयां ने कमेंट राही थैंक यू हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोहम्मद तारिक सानू कह रहे ने अस्सलाम वालेकुम हमेशा दी तरह जबरदस्त शो है बहुत शुक्रिया जी हमारा मैं ठीक ठाक अलहमदुल्ला हमदुल्ला भी कोयटा तो सानू वेलकम टू द शो कह रहे हैं बहुत शुक्रिया हमदुल्ला। फिरोज़ आलम सानू सुनते देसी बीट बड़ा अच्छा शो है सऊदी अरेबिया तो थानू सुनदा गुड इन्फॉर्मेशन तुसी शेयर करते हो टॉपिक बड़ा चंगा हुंदा है कदर के हवाले नाल बड़ा अच्छा टॉपिक है टॉपिक नू पसंद किया लेकिन ये हवाले नाल जरूर कुछ किया करो ठीक है जी। शफकत अली खान म्यों प्रोग्राम का हिस्सा बने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैं शफकत अली म्यों शौकत अली म्यों नंबरदार मुश्ताक खान म्यों नंबरदार मास्टर सलीम जावेद म्यों नंबरदार पीर महल चक नंबर 755 गा बे तो कमाल प्रोग्राम रेडियो एफ एम 101 की प्यारी टीम ने मैं सलाम पेश कर दें बहुत शुक्रिया जी। एजाज सानू सुन दिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरजे ज़ैनब अरशद सलामत रहो सुम आमीन थैंक यू सो मच जी। हमारा बेग ने क्या है कि जी मैं सुन रही हूँ अच्छा जी मैं समझ गई जी मैं पहुंच गई उजमा तुसी एक पोइट्री शेयर कर रहे हो है भी सारी उर्दू दी लेकिन थोड़े सोहने जी अल्फाज जड़े ने मेरे तिकर पहुंच गए बहुत शुक्रिया जी दुआवां च याद रखिया करो। नज़ीर खोसो आ गए सोहबतपुर बलोचिस्तान तो
ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਖੋਸੋ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੂੰ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ,

0: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।
1: You're listening to FM 101 अबले बले और शावो शावो।

जी लिसनर जी आई नू कहने वेलकम ते खुश आमदी। तुसी सुन रहे हो देसी बीट रेडियो पाकिस्तान 101 FM दे लाहौर स्टूडियोज़ तों अपनी मेज़बान ज़ैनब अरशद नाल। बहुत सारियां असीं गल्लां बातां थोड़े नाल कर रहे हैं, कदर दे हवाले नाल गलबात कर रहे हैं। इस हवाले नाल मज़ीद भी गलबात नू जारी रखांगे, लेकिन इस तों पहला एक जरूरी काम, एक जरूरी गल, एक जरूरी जनाब विश जिसनों असी करते चलीए। ऐसा ना होइए कि असी भुल जाइए, प्रोग्राम जिहड़ा तमाम हो जाए, एंड हो जाए तो सानू फिर याद आए। लेकिन मैं समझती हाँ कि इस तरह के लोग भी बड़े जरूरी होंगे ने, जिहड़े थानू रिमाइंड कराते रहन, जिहड़े थानू याद कराते रहन कि तुसी अज केड़ा जरूरी काम करना है। जी इस तरह ही हमारा बेग, बहुत शुक्रिया जी तुसी साडे नाल मौजूद हो अपने मैसेजेज राही। जवेरिया अजमल बेग नू असी ते इक ते सालगिरह की मुबारकबाद देनी है, दूसरा जी असी रिजल्ट की मुबारकबाद देनी है। जवेरिया ने मार्क्स लेने 818, बहुत सारी मुबारकबाद जवेरिया साढ़े वालों, साड़ी पूरी टीम वालों, अमारा बेग वालों, थोड़ी पूरी फैमिली वालों। रब तला थानू मजीद कामयाबियां देवे, बहुत सारिया खुशियां देवे, जो कुछ तुसी करना चाहते हो रब करे कि वह सब कुछ तुसी कर सको। अपनी जिंदगी च कामयाब रहो, कामरान रहो, खुश रहो, आबाद रहो, तो हमेशा अपने माँ प्यो वास्ते फखर का बायस रहो, प्राउड का बायस रहो। ठीक है जी, एक सोहना जहा प्रोमो असी थानू डेडिकेट करते हैं जी। प्रोमो के नाल विश ना किया तो फिर कोई मज़ा नहीं है जी।

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Come on, people. Come on. Get original.

This is FM 101. Come on, people. Come on. Get original.

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: सजड़ो ते बेलियो मैं जेली जफर
2: जफर
1: तुसी सुनदे पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल एफएम 101 मेरा मतलब है एफएम 101
3: आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: जहांगीर। और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: चौदह अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: Big radio, big style. Please, FM 101.

ਕਈ ਵਸਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਖੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

जो तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का,

लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। इस्लामी तआवुन तंजीम और मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने दोतरफा तआवुन मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मौजूद मौके का जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका हुकाम को सूबे भर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का यकसा मयार मुतारिफ कराने की हिदायत की है। लबनान और इसराइल ने अमरीका के ज़ेर सालसी मुआहदे के तहत हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के अमल की निगरानी के लिए फौजी दस्ते भेजने वाले ममालिक की मुख्तसर फहरिस्त पर इत्तफाक किया है। और अब खबरें तफसील के साथ।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आजाद हुए थे, और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

Big radio, big style. Please, FM 101.

0: इस मिट्टी के रंग, रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Big radio, big style.
1: Please, please.
0: FM 101.
2: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

Big radio, big style. Music. Please, FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please play
0: FM 101.
2: Thank you.

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। इस्लामी तआवुन तंजीम और मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए आसियान तंजीम की मुसलसल कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला हंगू में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खारिज को हलाक कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की हालत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। कई इस्लाम
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

हुसैन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान

0: And then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक। वन अबव एफएम 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
1: 101 FM।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

jazz music, and then their magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। इस्लामी तआवुन तंजीम और मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम किया है। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए आसियान तंजीम की मुसलसल कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज निस्फ शब को खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच गई है, जहां वो रवा माह की 19 तारीख से मेजबान टीम के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: On the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

वज्रम कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी बात है, अल्लाह का शुक्र और आप लोगों की दुआएं, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं और खैरियत से हूं। वज्र मौसम जो है वो बड़ा बेहतरीन हुआ है और आज शाम को बस कहीं इसमें आ रहा था और आते हुए जो जब आसमान की तरफ नज़र पड़ी तो यकीन माने कि इतना खूबसूरत मंज़र, इतना ज़बरदस्त, और बस दिल कह रहा था कि जो है इंसान फ्री हो के बिल्कुल हर काम से और बस इजी हो के जो है ना बैठ जाए और उसके बाद इस मौसम को इन्जॉय करे और वेट करे अच्छे से खाने का, और जब खाने का टाइम हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का खाना खाए। लेकिन लाइफ जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज़ है, आप जो चाह रहे होते हैं वो नहीं होता, जो लाइफ चाह रही होती है वही होता है। और लाइफ जो चाह रही होती है वो पता नहीं क्या चाह रही होती है। एनीवेज हम बस इसी चाह में लगे हुए हैं और चाह को पूरा करते करते ही इंसान का ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी का जो सफ़र है ना वो ख़त्म हो जाता है, कभी अपनी चाह, कभी किसी की चाह, और इस चाह में कभी कभी कहीं अच्छी चाह मिल जाती है, लेकिन अगर अच्छी चाह ना मिले तो मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है आपका। जब दिल कर रहा हो अच्छी चाय पीने को, ओए होए होए होए, और उस वक्त ही बंदा कहता है बोलो बोलो तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, चाय बनानी नहीं आती तो कुछ नहीं आता।

Well, just welcome back after this beautiful track. FM 101 Radio Pakistan, Lahore ke studio se awaaz sun rahe hain Masood Ahmed ki. Mera aapka saath rehta hai janab har hafte ke roz raat 10 se 12 mein. Is program mein jiska naam hai Shab Khiziyan. Aur Shab Khiziyan jo hamara program hota hai, ye sirf aur sirf naujawanon ke liye hota hai. Aur mazey ki baat ye hai ki naujawanon mein koi umar ki qaid nahi hai. Jo asli naujawan hai unke liye, जो थोड़े से बड़ी उम्र के नौजवान हैं उनके लिए, और जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के नौजवान हैं उनके लिए भी, और जो बहुत बड़ी उम्र के नौजवान हैं उनके लिए भी. तो इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि सिर्फ और सिर्फ हम नौजवानों की बात करते हैं. हमारे लिए आप सभी जवान हैं. अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ रखे. तो जनाब, अगर आप हमारे पास आना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं. इस रैंक के आप हमें डायल करेंगे, हमें हमारा नंबर, द नंबर इन माय स्टाइल इज 1711040017, एंड इन योर स्टाइल द नंबर इज 1110011. दिस इज़ द मैजिकल मिस्ट्रिकल एंड द म्यूजिकल नंबर ऑफ लाहौर, और यू कैन से द ट्रिपल एम नंबर. और इसके अलावा जी, फेसबुक पर हमारा पेज है FM101 लाहौर का, उस पर हमारी पोस्ट पर कमेंट करके, शब खेजियां की पोस्ट पर कमेंट करके भी आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं. उसके अलावा जी, 4471 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. उसके लिए आपने अपने राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, वहाँ लिखना है आपने 101, उसके बाद एक खाली जगह देनी है, उसके बाद अपना खूबसूरत सा नाम लिखना है, और फिर एक और खाली जगह देकर अपना खूबसूरत सा पैगाम लिखना है, और उसको आपने सेंड कर देना है 4471 पर. वैसे जी, हमने जो आज का जो अपनी क्यू शीट है वो भी कुछ मौसम को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बनाने की कोशिश की है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्यू शीट में से कुछ बरसात का पानी टपकेगा, ऐसा कुछ नहीं है. या आपकी आंखों से आंसू टपकेंगे कि हमारी क्यू शीट को सुनकर या उसके बारे में जानकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बस हमने कोशिश की कि जैसा आज खूबसूरत सा मौसम हुआ बना, हम अपनी क्यू शीट को भी ऐसा खूबसूरत सा बनाएं और उसको खूबसूरत से रंगों से भरें, जितना खूबसूरत आज आसमान लग रहा था मुझे. वैसे जी, कहते हैं कि ये तरफा मोहब्बत जो है वो भी बड़ी जालिम चीज होती है. और ये हमारा आज का टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है.

बस हम 10 बजकर हो चुके हैं 24 मिनट और अगर आप इस वक्त रोड पर ड्राइव करें तो ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए और वो तमाम लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन सब के लिए भी आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे मौसम में कि जब रोड्स स्लिपरी होती हैं तो एहतियात का जो दामन है वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। एहतियात और सब्र दोनों का दामन जो है वो इंसान को थामे रखना चाहिए, तभी ही हम अपनी मंजिल की तरफ बेहतर अंदाज में पहुंच सकते हैं या उसकी जानिब बढ़ सकते हैं। ओवर स्पीडिंग और बेसब्री जो है वो हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा होता है कि सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे जैसे ज़माने की पेस बढ़ रही है, बहुत हालात चेंज होते जा रहे हैं और हर चीज़ का हर किसी को जवाब जो है बस फौरी तौर पे चाहिए। आप चाहे किसी बड़े से बात कर लें, किसी बच्चे से बात कर लें, लेकिन बड़ों से मेरी मुराद अब वो जनरेशन नहीं है जो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ की जो दौड़ है उससे आउट हो चुके हैं, जो अभी इन हैं लाइफ में और चल रहे हैं उनसे मेरी मुराद है कि बस हर चीज़ क्विक होनी चाहिए। और जैसे अब क्या कह लेंगे, व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज जो है वो बस एक क्लिक से जो है वो पहुंच जाता है और साथ हमें रेड और अनरेड का भी पता चल जाता है कि मैसेज पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, और अगर ना पहुंचा हो तो फिर बहुत उस वक्त हमें उलझन हो रही होती है कि अभी तक हमारा मैसेज जो है वो देखा क्यों नहीं गया। बहुत जल्दी होती है हमें, हर काम में बहुत जल्दी होती है किसी भी चीज़ के जवाब के लिए, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सब्र जो है बहुत ज़रूरी होता है। वेल जी, आपके जो मैसेजेस हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, उन्हें मैं ऑन एयर करता चलूँ। नज़ीर खोसू साहब ने हमें मैसेज किया बलूचिस्तान से और कह रहे हैं कि लोग मूड के हिसाब से अहमियत देते हैं, जब इनका मूड अच्छा होता है तो आप भी अहम हो जाते हैं और जब इनका मूड ख़राब हो तो आपका भी ग्राफ बेमकसद हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, होता है, और शायद ये इंसान की नेचर है कि उसको हर चीज़ में अपना मुफाद कह लें या अपना मूड जो है वो उसको अपने उसको जो है वो प्रायोरिटी देता है, जबकि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रो किस्म के लोग होते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक आम आदमी की एक कहानी होती है कि जिसका मूड जो है वो उसके काम से ज़्यादा अहमियत रखता है। जो प्रो लोग होते हैं उन्होंने अपने मूड को बहुत पसे पुश्त रखा होता है, उनके लिए उनका काम जो है वो उनकी प्रायोरिटी होता है और उनका मकसद होता है वो, और वो उसी की लॉ में उसी की लगन में जो है वो चलते हैं। मूड को वो बहुत बाद में देखते हैं कि आज मूड क्या है, या अब जब काम से फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद जो मूड की जानिब जो है वो तवज्जो उनकी आती है। एनीवेज जी, मूड जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरा भी कुछ डिफरेंट हो रहा था, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो कुछ हो रहा था वो उससे बहुत डिफरेंट था, तो इसलिए हमने भी मूड को पीछे छोड़ दिया और हमने कहा कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो चल रहा है जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है। वेल जी, टॉपिक के हवाले से आपको बताते चलेंगे, टॉपिक जो है आज हमने आपका दोनों तरह से टेस्ट एक लेना है। टेस्ट क्या लेना है कि हमने टेस्ट आपका इस तरह से भी लेना है कि देखना है कि आप फिज़िकली जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली कितने सॉलिड हैं, और उसके साथ साथ इमोशनली कितने सॉलिड हैं, इसकी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी आज जो है वो जजमेंट करें। और जजमेंट कैसे करेंगे कि जजमेंट हम ऐसे करेंगे कि आपने अपनी कोई भी ऐसी बात जो आपका बहुत ज़्यादा बताने को दिल कर रहा है, किसी को सुनाने को दिल कर रहा है, तो बहुत ही दिलचस्प कोई वाकया है, कोई इंसिडेंट है, कुछ भी है जो भी आप शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ, वो आपने हमारे साथ शेयर करना है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, वो ये है कि आपने सिर्फ एक सांस में हमें वो सुनाना है, जो भी बात है आपकी उसको आपने बस एक सांस में सुनाना है, दूसरा सांस नहीं लेना वो बात पूरी करते हुए, है ना। अच्छा, अब इसे टेस्ट कैसे होगा, इसे टेस्ट नहीं होगा कि टेस्ट ऐसे होगा इससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो लोग तो अपनी पूरी बात एक सांस में कह जाएंगे, और ये नहीं कहना कि ऐसे करके नहीं कह देना, उसको आपने पूरे कैसे तरीके से समझाना है, बताना है कि जो दूसरे इंसान को भी समझ आ जाए बात जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आपका मकसद है वो उनको भी पता चल जाए और वो बात उन तक भी पहुंच जाए कि वो बात ठीक है जो आपने एक सांस में बताई है। और उसके साथ साथ इमोशंस का भी टेस्ट हो जाएगा कि वो बात जो बड़ी ज़ोर से इंसान को आई हो ना, बहुत उसका दिल कर रहा हो किसी को सुनाने को, तो उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी बहुत बढ़ जाती है और जो है वो बस उसको होता है कि जल्दी से वो बात जो है ना वो कह डाले और जो दूसरा सुनने वाला है बस वो हर तरह से रेडी हो उसकी उस बात के लिए। तो जनाब, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, दिल की बात सिर्फ एक सांस में। कहते ना, कह दो जो भी मन में आए, सुनने वाला नहीं खो ना जाए।

0: gentlemen, boys and girls.
1: What's new? You'll know if you

0: वेलकम वेलकम बैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की। मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक इन द शो दैट इज कॉल्ड शब खेजियां। और जब 4471 पे आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब मैंने रिफ़्रेश किया पेज को तो मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे मैसेजेस देखकर, और बड़ी खुशी हुई कि लोग जो हैं वो इस पर भी इतनी खुशी से मैसेज करते हैं। वो इसलिए कि कुछ थोड़ा सा आजकल SMS का ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है ना, व्हाट्सएप पर होता है और व्हाट्सएप का हमारा बड़ा सिस्टम जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है, देखें कब तक अपडेट होता है। वैसे मैं एक चीज़, अभी जब ये सॉन्ग चल रहा था तो मैं इस चीज़ का भी इस बारे में सोच रहा था सॉन्ग के चलते चलते कि अभी अच्छा है कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि जिस पर सिर्फ आवाज़ जाती है, तस्वीर नहीं जाती, इससे भी इंसान बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। एनीवेज 4471 के मैसेज की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद, कैसे हैं आप? वेलकम आपके आने पर। आई एम सॉरी, वैसे गला तो मेरा ख़राब नहीं था, शायद थोड़ा सा बस खुश्क हो गया बोलते हुए। मेरे लिए भी अब एक सांस में बोलना जो है वो शायद मुश्किल होता जा रहा है, उम्र का तकाजा है कुछ शायद। एनीवेज कह दीजिए अस्सलाम वालेकुम मसूद, कैसे हैं आप? वेलकम आपके आने पर, आपको बहुत शुक्रिया। और आपने अपना नाम नहीं बताया तो नाम भी ज़रूर बताइएगा। कह रही हैं अच्छा एक सवाल है कि किसी के आने जाने से या फिर चले जाने से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल जी, फ़र्क तो पड़ता है, और फ़र्क जो है वो बहुत पड़ता है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन के, कुछ लोग होते हैं जो फ़र्क को महसूस तो करते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करते, उसको एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, शायद अपने उस एहसास को, अपनी उस फीलिंग को छुपाने के लिए करते हैं। हर किसी का रिएक्शन डिफरेंट होता है। अब मैं उस बारे में कुछ हतमी राय नहीं दे सकता क्योंकि इतना जो फ़लसफ़ा है वो ना मुझे आता है और ना मुझसे होता है। इतने पढ़े लिखे होते हम तो जाने कहाँ होते। एनीवेज ही बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये छोटी सी बात जो है वो उसका छोटा सा जवाब ये है। अब इसको आप जितनी मर्ज़ी अल्फाज की लड़ियों में पिरो लें, आप उसको जितनी गहराई में ले जाना चाहते हैं ले जाएं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एनीवेज ही, और हमें किसी ने जरा मैसेज किया, लो जी इन्होंने मैसेज में अपना नाम नहीं बताया था, और आगे जो है वो इतने नाम हैं कि इतना माशाल्लाह लंबा चौड़ा नाम है। कह रहे हैं एम शफात अली ख़ान बलोच शुजाबाद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं है अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा शायद ये भी नाम का हिस्सा है उनके। कह रहे हैं कि जी इन द पास्ट जब लोग मिलने के बहाने तलाश करते थे, अब मतलब हो तो याद किया जाता है और मतलब ना हो तो फिर कुछ भी याद नहीं किया जाता, और बुज़ुर्गों की बातें जो हैं वो बड़े गौर से सुनते थे, अब तो नो टाइम, सलाम टू ऑल। बिल्कुल जनाब ऐसे ही है, अब तो बस AI का दौर है। मैंने बताया ना शुरू में जैसे जैसे बात की कि अब सिर्फ जल्दी जल्दी का दौर है ना, बुज़ुर्गों के ना वैसे बुज़ुर्ग रह गए अब, मतलब पहली तो बात यह है कि ऐसे बुज़ुर्ग भी अब बहुत ही कम अवेलेबल हैं, और अगर कुछ हैं तो शायद उन्होंने भी अपने आप को बस अपने आप में समेट लिया है कि बस शायद वो ये समझते हैं कि हमारी बात को अब ये लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हमें अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो है वो क्या कह लें कि इनके सामने बयान करने की ज़रूरत नहीं है, और बस जल्दी जल्दी है, AI है, जल्दी जल्दी हमें हर चीज़ का जवाब चाहिए। हमें अब वो डिक्शनरी खोलने की, हमें अब बात पे गौर करने की वो टेम्परामेंट नहीं है, बस हमें होता है जल्दी से आप किसी भी AI टूल पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालें और बस झट से जो है ना आप उसका जवाब ले लें, सोल्यूशन ले लें, जवाब भी नहीं सोल्यूशन ले लें, अब तो डायरेक्ट बात सोल्यूशन की है। और जी हमें किसने मैसेज किया, हमें जनाब आतिफ हुसैन साहब ने मुल्तान से मैसेज किया। सर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और शफाद अली खान साहब ने दोबारा किया, अच्छा जी कह रहे हैं कि जी हमारी मदर जो है वो दुआ करती हैं आप सबके लिए। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आप वालदा को भी हमारा सलाम पेश कीजिएगा। इसके अलावा जी उमर शेख साहब ने हमें, नहीं उमर साहब ने शेखुपुरा से मैसेज किया और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, बेस्ट ऑफ लक, राहत फ़तेह अली का सॉन्ग दोस्त बन के लगा दें प्लीज़। वैसे राहत का मैंने एक और सॉन्ग क्यों किया हुआ है, मैंने अपनी क्यू शीट में रखा है, क्योंकि राहत और नुसरत साहब के बगैर जो क्यू शीट है मुझे बस कुछ अधूरी सी लगती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उस ट्रैक को आपके इस ट्रैक के साथ मैं रिप्लेस कर सकूँ। और इसके अलावा जी हमें किसने मैसेज किया, कह रहे हैं कि जी जी बात तो सही है, एक तरफा कोई भी रिश्ता हो वो बहुत तकलीफ देह होता है मसूद। अब आगे जैसे मसूद लिखा हुआ है ना, ओहो हो, मैं कहना अच्छा है रेडियो पे तस्वीर नहीं आती। अच्छा कह रहे हैं कि जी अच्छा अगर मुमकिन हो तो प्लीज़ बनी का सॉन्ग चलाओ चलाओ अच्छा अच्छा नहीं बनी का सॉन्ग चाहो अगर तुम अच्छा मुझे लग रहा था बनी का सॉन्ग चलाओ मैंने कहा ये कौन है जी चलाओ अच्छा बनी का सॉन्ग है जी चाहो अगर तुम सोचो ज़रा प्ले कीजिएगा बस दिल कर रहा आपके शो में सुनने को अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा दिस इज़ जूनी फ्रॉम लाहौर ये जो इस तरह के जो पहेली नुमा मैसेजेस हैं वो आपके हैं ठीक हो गया बहुत शुक्रिया जी मैं को ज़रूर कोशिश करता हूँ बनी की आवाज़ प्ले करने को और जी अब्दुल नूर हाशमी साहब ने कॉल किया हाशमी साहब कैसे हैं आप सर आपकी तबीयत मिजाज ठीक हैं और कह रहे हैं लो जी इन्होंने भी जनाब लिख दिया डियर मसूद खान और सर ना करया करो एन जी और कह रहे हैं कि अच्छा मसूद अगर कोई बंदा या बंदी अपनी सांस ही सांस से ही हाथ धो बैठा तो नहीं जी अपनी सांस से अल्लाह ताला रहम करे हम कोई ऐसा थोड़ी चाह रहे हैं कि आप अपनी सांस से ही हाथ धो बैठे हम तो आपकी सांस को मजबूत करना चाह रहे हैं कि आपकी सांस मजबूत हो आप एक ही सांस में अपनी बात कह दें और देखते हैं कि हम ये आप कह पाते हैं कि नहीं कह पाते आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आप जो भी बात अपने दिल की या जो भी आपके जहन में है जो हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो आपने करनी है ज़रूर करनी है लेकिन जस्ट एक सांस में दूसरा सांस उस बात का नहीं होना चाहिए वो कोई और बात होगी फिर
1: मैं तुझको ढूंढ रहा और खुद से पूछ रहा दिल जाए या जाए ना तेरे साथ
0: तेरे साथ
1: तेरी आवाज ना आए अब कौन मुझे समझाए दिल जाए या जाए ना
0: तो आपने पूछा था ना जी किसी के जाने से या आने से कोई फर्क पड़ता है या चले जाने से तो ये जाने के बाद ही पता चलता है

वर्ष हम 10 बजकर हो चुके हैं 47 मिनट। खाने छाने का क्या प्रोग्राम है जी आपका? खाना छाना आपने खा लिया कि नहीं खाया? मैंने तो अभी खाना नहीं खाया, बस खाने का आज हमारा प्लान है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और डिफरेंट वो मैंने बताया ना कि जैसे हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा हम ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, अच्छा मैं अभी नीचे जाता हूँ, मैंने बस अभी रेडियो के लिए निकलना है और मैं खाना खाते हुए निकलूँगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका प्लान चेंज हो जाए, आपका प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो जाए तो भी बस सरप्राइज इंसान एकदम कहता है अच्छा है क्यों है जब ठीक है, उन बंदा जो है वो कुछ कह नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए फिर बंदा कहता है कि आओ कहीं दूर चले जाएं हम। एनीवेज 4471 पे आपके मैसेज जो हैं वो मुझे मौसूल हो रहे हैं और कह रही हैं कि जी मेरा अच्छा सा नाम जोनी है मसूद और बहुत शुक्रिया आपने मसूद कहा, और आज खान साहब का जो है ना वो आपने मेरा लकब जो है वो अब्दुल नूर हाशमी साहब को दे दिया है, आज उन्होंने मेरे नाम के साथ खान लगा दिया है, तो बस ठीक है जी। कह रहे हैं और जी हमें किसने मैसेज किया है, एक और मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहें शाद रहें। बहुत शुक्रिया जी आप नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने 4471 पे मैसेज किया हमें। कह रहे हैं और जी हमें किसने मैसेज किया है, एक और मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहें शाद रहें। बहुत शुक्रिया जी आप।

टू माई शो, वेलकम टू एफएम 101। मुझे कहते हैं जी मसूद अहमद, मेरा आपका साथ रहता है हर हफ्ते के रोज 10 से 12 में इन द शो दैट इज कॉल्ड शब खेजियां। इसमें हम बातें करते हैं बहुत सारी, और बातें करते हैं जो होती हैं सीधी सीधी, छोटी छोटी, प्यारी प्यारी, बच्चों वाली बातें करते हैं हम, बड़ों वाली बातें हमें नहीं आती। एनीवेज जी, हमें मैसेज किया 4471 पे, जनाब किसने 4471 पे हमें मैसेज किया है? यस, जूनी ने मैसेज किया, कह रही है कि जी हाँ ना, जैसे एक तरफ़ा मोहब्बत का जो दर्द होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे आप, हम अपने दर्द को तो महसूस कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे के दर्द से या उसके दर्द से कहाँ वाकिफ होते हैं। अच्छा जी, तो ऐसा है क्या? कुछ वाकिफ हो के भी ना वाकिफ होते हैं और कुछ ना वाकिफ हो के भी वाकिफ हाल होते हैं। वो कहते ना जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, गुलिस्तान तो सारा जाने हैं। एनीवेज, महबूब खान साहब ने मैसेज किया और मैंने ब्रो आपके लिए अभी पश्तो वाला ट्रैक जो है वो प्ले किया था, लेकिन आपने तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई अच्छा सा ट्रैक सुनने का गाया। अब खान साहब ने कोई पश्तो में गाया कि नहीं गाया, हालांकि वो ख़ुद भी खान साहब थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने पश्तो में कुछ गाया था। तो बहरहाल मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि नुसरत साहब की आवाज़ में कोई ट्रैक अब तो अगले घंटे में मैं प्ले कर सकूँगा। और 11 बजे के बाद जनाब आपकी लाइव कॉल्स हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है, और उन लाइव कॉल्स में जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि आपने हमसे जो भी बात करनी है, जो भी आप हमें आज के दिल में जो मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, वो बात आपने सिर्फ और सिर्फ करनी है अपनी एक सांस में। उसके बाद ये नहीं कि सांस लेना छोड़ देना है बस ये है कि क्योंकि बहुत क्या कह लें कि बहुत दफ़ा ये होता था कि मुझे सुनने को ये भी मिलता था कि जी बहुत लंबी लंबी कॉल्स ले लेते हैं आप और बहुत लंबा लंबा करते हैं, बात करते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा चलें आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम सिर्फ वो बात करेंगे जो एक सांस में मुकम्मल हो जाए, क्योंकि बाज़ुकात ऐसा होता है कि बाज़ुकात क्या, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ जाए कि हमारे पास हो ही एक सांस और बचे ही एक सांस, और उस सांस में अब हमने क्या कहना है और कैसे उसको मैनेज करना है। हुए हुए हुए

0: Coming up next, 101 News Headlines. Coming up next, 101 News Headlines.
1: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। इस्लामी तआवुन तंजीम और मुतादिद इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे का भरपूर खैर मकदम किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए आसियान तंजीम की मुसलसल कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुतालिका हुकाम को कूड़ा क्रिकेट ठिकाने लगाने का यकसा मयार मुतारिफ कराने की हिदायत की है। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है।
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.

0: वैसे मैं तो तेरे आंसुओं से बना हूँ, क्या बात है। एनीवेज वी हैव द फर्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक हो?
0: अल्लाह का शुक्र जनाब, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो बोधी जट साहब?
1: हाँ जी सर, ठीक ठाक, करो अल्लाह का दुआवां सर तुहाडियां ते माशाल्लाह सर तुहानू दो हत्थां नाल सलूट है तुहाडी पूरी टीम नू सर।
0: हाँ बिल्कुल, तुसी मेरी टीम नू जरूर सलूट कर सकते हो, तो बहरहाल मेरे से तो ऐसी गल कोई नहीं कि मैं तुसी सलूट करो, तो बहरहाल तुहाडी मेहरबानी कि तुसी पसंद करते हो तो चाहते हो तो तुसी प्रोग्राम दे विच कॉल करते हो। तो अच्छा दसो, प्रोग्राम सुनते पे सी तुसी?
1: जी सर, पूरा सर सुनिया प्रोग्राम।
0: क्या बात है, क्या बात है, बड़ी गल है। तो ये दसो कि जिहड़ा साडे प्रोग्राम दा टॉपिक है उहदे बारे की कहोगे
1: सर?
0: एक
1: जट
0: हो गल करके कवे लो जी बस एनी गल करनी सी, एनी जी साज बंदा एनी जी गल ही करदा
1: सर वेखो
0: चलो फिर जनाब जरूर, लेकिन अजकल जरा एहतियात करो, करो कन्या कुन्या जानते अजकल तो सुने पानी छानी आया है फिर?
1: हाँ जी सर, रावी दे पानी आया तो सर कोई गल नहीं, सारी जिंदगी सर रावी ते लंघ गई है,
0: वजह भी तो सर इंशाल्लाह अंको ए कहो कि सानू कुछ नहीं कहंदा रावी हुन?
1: नहीं सर, अल्लाह माफी दे, पानी ते आग ते बचना चाहिए,
0: बचना चाहिए बिल्कुल। हां जी बिल्कुल,
1: कई सर साले भी विच आए ने, आईयां ने पुहाड़ियां सी भी गोते खादे।
0: अच्छा, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर करे,
1: लेकिन शुक्र है अल्लाह दा बच गया ते सर खैर होवे तुहाडी माशाल्लाह।
0: चलो बहुत शुक्रिया बोधी जट साहब, मैं तुहाडी रिक्वेस्ट जेड़ी है ओ मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करने के इस कैंड डिस्प्ले कर दें जी, ठीक है?
1: खैर हो गई सर, तमाम सुनने वाले नु सलाम सर, ते
0: रावी दे किनारे खुशबू खुशबू ला के भाई जी एहो जिहियां ऑफरां ऑफरां खतरनाक ही हुंदियां ने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप आपके?
2: मेरे हाल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने बगैर कहे आप कह दिया।
0: नहीं हम तो आपको आप आपकी आवाज से पहचान लेते हैं कि आप हमारी कराची वाली आप आए हैं।
2: मोहब्बत है आप लोगों की।
0: सही, तो आप प्रोग्राम सुन रही थी फिर?
2: अजी मैं तो शुरू से सुन रही हूँ, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस किए जा रही हूँ कि एक सांस में कितनी बातें। ये मसूद ने सही पाबंदी लगा दी।
0: तो बस अब जल्दी से शुरू करें, जल्दी से बात शुरू करें ताकि आपकी बात ज्यादा हो सके और सांस खत्म होने से पहले आपकी बात पूरी हो जाए।
2: सांस तो अभी खत्म हो गई, सलाम करते करते।
0: तो आप योगा शोगा नहीं करती हैं आप?
2: योगा शोगा क्या करेंगे, योगा हम कोई करें।
0: नहीं नहीं, कोई कुछ किया करें ना, कोई योगा शोगा किया करें, कोई एक्सरसाइज किया करें। क्या करती हैं?
2: एक्सरसाइज भी, वॉक वगैरह भी, ये सब करती हूँ, योगा पोगा नहीं आता भैया।
0: चले वॉक वॉक शॉक किया
2: करते हैं ना, ये मुंह का योगा खुद ब खुद हो जाता है।
0: ये तो है, वो खुद ब खुद हो जाता है।
2: मसूद बहुत अच्छा प्रोग्राम,
0: थैंक यू।
2: पानी का मैं एक जरा सी बात बता रही हूँ, बगैर बोले समझ जाएगा खुद ही
0: जी, ठीक है।
2: जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है।
0: सही। अच्छा ये बाग है, ये गुलिस्तां है?
2: हाँ नहीं, बाग है,
0: बाग है। सही, जो शेर है उसमें बाग आता है।
2: हाँ जी बाग है।
0: चले मैं
2: जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है।
0: अच्छा
2: नहीं ये बाग है। आपको शायरी से इतना लगाव नहीं है।
0: Exactly.
2: तो नहीं। है कि बहर में आ रहे हैं दोनों मिसरे या नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी दिलचस्पी की बात है। अच्छा मुझे ये बड़ा दिमाग मेरा आउट रहता है, कोई गलती हो ना किसी की तो बस वो।
0: नहीं अच्छी बात है, उसकी तस्दीक कर देनी चाहिए। तो वो सांस वाली बात कहाँ गई आपा?
2: अरे चंदा जी कहाँ से करूँ, मेरी सांसें तो वैसे रुक रही हैं। पहले मुझे एक सांस में ये कहूँगी कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और सब सुनने वालों के लिए बहुत दुआ, बहुत प्यार और बड़े तारिक साहब को स्पेशली बहुत सलाम।
0: चले
2: इतने प्यारे अंदाज में वो याद करते हैं ना, इतने मासूम से कॉलर, बड़ी अच्छा, बड़ी मुख्तसर, बहुत अच्छी झामे बात करते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे
2: ही, और पे आपके आते हैं वो شہزاد صاحب
0: ہیں.
2: کل اتنی پیاری بات کی تھی کل, کون پروگرام کر رہے تھے, ڈاکس کا تھا یا کس کا پروگرام, بڑی پیاری بات کر رہے تھے.
0: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. آپ بھی بہت پیاری ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ ٹائم آپ نے تھوڑی سی یوگا جو ہے نا وہ سیکھ کے اور کر کے آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں آنا ہے, ٹھیک ہے؟ چلے خوش رہیے گا, خوش رہیے, تھینک یو, اللہ حافظ. ویل جی, یہ تھی ہماری آپا کراچی والی, اور کراچی والی تو ہیں یہ, لیکن بس بریانی جو ہے نا ہمیں نہیں کھلاتی ہیں, اور جو ہے بس ان سے کسی دن ہم نے بریانی کھا لینی ہے, ہم نے سرپرائز دے دینا ہے آپا کو کسی دن. اینیویز, نصرت فتح علی خان صاحب کی ریکویسٹ ہمیں موصول ہوئی تھی اور وہ ہم پلے کیے دیتے ہیں جی. اور ریکویسٹ کس نے کی تھی اب اس بارے میں تو مجھے, ہاں ہمیں خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور ان کا نام تھا جی محبوب خان صاحب. تو خان جی سادگی ہماری دیکھیے, نوال نے ہمیں میسج کیا جی, کہہ رہی ہیں بہت سی دعائیں آپ کے لیے, باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ. بس ہی ہم بے ادب سے لوگ ہیں, اچھی باتیں ہم سے نہیں ہوتی, بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش رہتے ہیں. اینی ویز, سارا نے میسج کیا کہ میں نہیں ابھی, میں نے ابھی کڑی پکوڑا کھایا. واہ واہ واہ, اس موسم میں کڑی ہو, ہاں ہاں ہاں ہاں, کیا بات. بس شرط ایک ہے, شرط یہ ہے کہ اچھی بنی ہوئی ہو.

जी यहाँ तो बात हो रही है कि एक हिचकी में कह दी हमने सब दास्तां, हमने तो फिर एक सांस की गुंजाइश दी है आपको। किस्से को मुख्तसर करना भी किसी किसी को आता है।

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम मसूदे, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं?
1: मसूदे तारिक कृष्ण नगर लाहौर से।
0: जी बिल्कुल, मैंने पहचान लिया तारिक भाई, आपने जब कहा ना मिल गई कॉल मिल गई।
1: मेरी सिस्टर सुन रही होती है ना, तो उनको लगा के देता हूँ रेडियो, मेरी कॉल मिल गई है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हाल है आपके सर, मिजाज कैसे हैं आपके?
1: वो अभी खास में मैंने ना पहले तो वसीम साहब को सलाम देना, आरजे वसीम साहब को। वैसे तो सभी आरजे अच्छे हैं, और अपने डॉक्टर साहब को मैंने फर्स्ट टाइम सुना था आपको।
0: अच्छा,
1: भी
0: अच्छा,
1: लेकिन वसीम भाई को दोनों हाथों से सलाम, बल्कि चार हाथों से, तो चारों से सलाम करना था। एक्चुअली उनका प्रोग्राम नहीं सुन पाता रात को, एक्चुअली ऑफिस जाना होता है ना मुझे।
0: अच्छा अच्छा, आपकी भी नाइट जॉब है आपकी भी?
1: नहीं नाइट नहीं है, मुझे मॉर्निंग में जाना।
0: अच्छा,
1: होता है ना।
0: अच्छा,
1: फिर
0: अच्छा,
1: उनको रात को 2 बजे आते हैं।
0: 2 बजे आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
1: छुट्टी कर, जिस दिन छुट्टी कर लेता हूँ, कॉल सुनता हूँ उनका प्रोग्राम सुनता
0: हूँ, ऑफिस से छुट्टी हो जाती है,
1: उससे छुट्टी हो जाती है।
0: फिर तो आप ऑफिस में मशहूर हो गए होंगे, जिस दिन आप छुट्टी करते होंगे किसी भी वजह से तो लोग ये कहते होंगे, तो फिर रेडियो की वजह तो सोता रह गया होना है।
1: नहीं सभी मेरे ऑफिस में सबका पता है, यकीन करें आपका।
0: अच्छा,
1: भी आ रहे हैं ना सबका, मुझे वो भी सुनना शुरू हो गए रेडियो।
0: गुड गुड, ये तो आपने फिर हमारी जो है वो फ्री में पब्लिसिटी कर रहे हैं आप हमारी,
1: बिलीव करें बड़ा मजा आता है, यकीन करें।
0: गुड, बहुत शुक्रिया जी, और आपकी चाहत है, मोहब्बत है।
1: एक सांस में क्या कहना?
0: हाँ, एक सांस में वो बात कहें जो आप कहना चाह रहे हैं।
1: बात ये कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम सुना करें जितने भी है ना, जितने भी सुनने वाले हैं जी,
0: मतलब एक ही सांस में आपने बात पूरी करनी है अपनी। चले आपका सलाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जीते रहे, खुश रहे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वेल जी, ये थे तारिक साहब हमारे साथ, और इन्होंने एक सांस में जनाब कह के तो बात ही खत्म कर दी, और बात भी ऐसी कि क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: गुड माशाल्लाह, तो प्रोग्राम सुन रही थी आप?
2: थोड़ी देर पहले मैंने सुनना शुरू किया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि आज आप भागते हैं, क्योंकि आप आते नहीं रहे।
0: हाँ जी एग्जैक्टली, मैं बस नहीं आ सका, और बस होती हैं कुछ वजूहात।
2: हाँ बिल्कुल होती हैं, वो पता चला था मुझे भी, तो ताज़ियत है
0: बस ऐसे ही,
2: हमारे हिम्मत में जगह था।
0: आमीन आमीन, सभी को करे जी, और सबके लिए अल्लाह ताला बेहतर करे बस।
2: तो
0: बताइए,
2: मैं सुन रही हूँ। अब एक साथ तुसी की बच्चियां दी जान कटनी है?
0: नहीं, असी दे बच्चियां दी जान नु मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि देखें जब इंसान हेल्दी होता है ना, जो इंसान, आज मैं असल में एक साहब से मिला, और वो साहब की कोई एज होगी राउंड अबाउट 60, ठीक है। तो वो जनाब अपनी फिटनेस के ना बड़े मेरे साथ दावे कर रहे थे कि जी मैं बस ये भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ऐसे भी करता हूँ, मैं वैसे भी करता हूँ, और मतलब काफ़ी उन्होंने अपने इस हवाले से वो अपनी तारीफ नहीं मतलब बता रहे थे अपने बारे में। तो हाँ जी, नहीं ठीक थे वो भाई साहब, ठीक थे मतलब, तो हाँ, लेकिन उनकी बातों, उनकी मैंने ना मतलब असल में जब वो बात कर रहे थे ना, तो बात में वो बार बार ना बीच में सांस लेते थे जोर से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आप माशाल्लाह इतनी अभी फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये क्या वजह है, ये आप मतलब बात पूरी नहीं कर पाते और आपको सांस चढ़ जाता है? तो कहते हाँ बस थोड़ा सा मेरे साथ मसला है। मैंने कहा जी किस चीज़ का मसला है? तो कहते मुझे ना थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि आप इतनी वॉक कर लेते हैं, आप इतने किलोमीटर चल लेते हैं, आप इतना ये कर लेते हैं, आप वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल होता है जब आपसे तो अपनी बात भी जो जुमला है वो मुकम्मल नहीं हो पाता, तो आप तो इसका मतलब है कि इंटरनली आप जो हैं मतलब उतने फिट नहीं हैं। हाँ बस मैं बेटा ये बात जो बता रहा था ये मैं आपसे 10 साल पहले की आपको बता रहा था। मैं कहा जी ठीक हो गया। तो बहरहाल उससे मुझे आया कि शायद एक इंसान का जो जो ब्रीदिंग स्टेमिना है कि वो किस तरह से अपनी बात को लेके चलता है, और आया कि वो उसी सांस में उस बात को पूरा कर पाता है नहीं पाता, ये भी शायद एक उसके थोड़ी सी जो इंटरनली, क्योंकि कुछ लोग आप देखा होगा कि वो बात करते हैं तो बात करते करते उन्हें सांस चढ़ जाती है। अब वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से चढ़े, या कोई उनके साथ कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम चल रहा हो उसकी वजह से होती है। तो बहरहाल मेरा मकसद वो चेक करना तो नहीं था, लेकिन जस्ट एक अपने लिसनर्स को कह लें कि इस हवाले से गाइड करना था इनडायरेक्टली कि हाँ कि थोड़ी सी जो है ना इंसान थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इंसान को अपनी हेल्थ को देनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो वो इंसान पहले ख़ुद अपने लिए बोझ बनता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो फिर दूसरों के लिए एक जिम्मेदारी बन जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हम हो सकता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करें और ऐसे काम ना करें जिससे हेल्थ खराब होने का अंदेशा हो।
2: तारिक भाई जो थे ना, ये बात आपने बिल्कुल सही की और ये चीजें हमें समझनी और सोचनी चाहिए और इनको ज़हन में रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
2: स्टेमिना
0: ओए ओए देखा खत्म हो गया ना स्टेमिना
2: नहीं स्टेमिना नहीं खत्म हुआ कंग आ गई
0: कंग चलो पॉज आ गया बीच
2: पॉज आ गया सी तो कहना मैं चाह रही हूँ कि हमें ये चीजों को मद्देनजर वाकई रखना कि आप जो हालात जा रहे हैं, जो माहौल जा रहा है, जो हमारे खाने पीने हो गए हैं, जो हम बेतुका सो के बेतुका जागते हैं, उन चीजों को देखते हुए ना हमारी जो है ना फिजिकल हेल्थ काफी गड़बड़ी में जाती है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
2: तो इसलिए हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। वैसे वो अंकल कटी पतंग तो नहीं ना हो, वैसे सही चल रहे थे, मेरा मतलब है।
0: नहीं बस थोड़ा सा वो हो रहे थे इसीलिए तो
2: बस वो फिर कटी पतंग ही हो गए ना।
0: हाँ वो बस वो ये था कि स्टेप उतरते हुए एकदम वो पूरे एक साइड को झुक जाते थे
2: कभी
0: को जाता है
2: तारिक भाई जो थे ना उनको उन्होंने बात इसलिए जल्दी खत्म किया है आपको ये कह के क्योंकि उन्होंने खापे खा खा के उन्होंने स्टेमिना भी इधर उधर होया पे है।
0: अच्छा जी
2: कभी हुआ तो कभी हिया
0: इसीलिए उन्होंने कहा कि
2: सारा दिन बातें करते रहते हैं के बारे में और खाते रहते हैं।
0: गुड तो
2: अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वैसे भी इनकी तबीयत खराब थी, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती। मेरा भाई टेंशन नहीं लेनी थी तो फिर तो
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ले आपा बहुत शुक्रिया।
2: एक सांस में बात तो मैं नहीं कर सकती, एक सांस में सिर्फ ये कह सकती हूँ वाह वाह जी हो बिल्कुल टाइम पे आए आपने बहुत अच्छा किया।
0: चले ठीक हो गया, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है स्विमिंग जो है वो बहुत इंसान का स्टेमिना बनाती है। कहते हैं कि इंसान अगर कोई और एक्सरसाइज ना करता हो और सिर्फ स्विमिंग करता हो,
2: स्विमिंग बहुत बेहतरीन
0: है। हाँ जी, तो वो बहुत फिट रहता है।
2: तो
0: बहुत अच्छी एक्सरसाइज
2: है। अपना मुख्तसर सा टॉपिक था और अब हम उसी छेती से ठीक साथ ही नाच जाइए। दूसरी बात ये है कि लास्ट टाइम मैंने सर तोड़ कोशिश की थी कॉल मिलाने, इतना मजे का टॉपिक था और मेरी कॉल ही नहीं मिली, फिर मैं भी इसको इशारे से बह गई।
0: फिर तुसी भी क्या अच्छा ठीक है नहीं तो फिर ना ही सही चलें ठीक है नीला अपना ख्याल रखिएगा।
2: वेलकम बैक,
0: बहुत शुक्रिया,
2: बहुत अच्छा लगा, आते रहिएगा प्लीज
0: इंशाल्लाह।
2: और जितने मेरे बहन भाई दुआ सलाम मुझे देखे जाते हैं सबके लिए बहुत सी दुआएं और बहुत सी नेक तमन्नाएं और सलाम। अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू, जीती रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वेल जी, ये थी अनिला हमारे साथ अपनी बहुत सी प्यारी सी बातों के साथ और ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी प्यारी बातों के साथ। और आपकी मोहब्बत चाहत है कि जी कि आप लोग याद रखते हैं, आप हमारे गम को भी याद रखते हैं और हमारी खुशी को भी याद रखते हैं।
3: पता है जब तुम हंसती हो तो कैसा लगता है?
4: कैसा लगता है?
0: कभी कभी इंसान को कुछ चीजें बयान करने का मजा आता है,
3: मुझ पर
0: कभी
4: अच्छा
0: कुछ भी बयान नहीं करने का मजा आता है।
4: इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे?
3: मोहब्बत तो बचपन में की थी, मैं तो इश्क करता हूं।
0: वेल जी, आपके मैसेज मुझे मिले हैं फेसबुक पर हमारी पोस्ट पर, जिसमें जनाब निमरा कह रही हैं कि जी मैंने भी कोफ्ते आलू खाए हैं। ठीक है जी, खाओ, खाने के लिए दुनिया में आए हैं।

0: कहा था ना इश्क मरवा के छोड़ेगा।
1: इश्क तो मैंने किया है पूरी ईमानदारी से, फर्मा बरदारी से।
0: ये क्या किया तुमने बोलो, क्या किया है तुमने? अब साथ रहना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे।
1: साथ रहने की बातें तो तुम करती थी, मैंने तो बस साथ मांगा था तुम्हारा।

0: वेलकम बैक। ये जो फिल्मी सीन था ना, ये इसके साथ बोनस था। वी हैव द नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
1: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मसूद भाई ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देंगी?
1: मसूद भाई मुझे तो नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, एस से शुरू होता है मेरा नाम।
0: किस से?
1: एस से।
0: जी अच्छा, एस से सलमा
1: शमीमा भी बोली।
0: आपा मैंने बिल्कुल पहचान लिया था, मैं तो वैसे आपको चेक कर रहा था जरा, कि मैंने कहा देखूं कि आप
1: कोई बात नहीं, कोई बात
0: तो कैसी हैं आप? आपकी तबीयत सेहत कैसी है?
1: जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: काफी अरसे बाद आप भी मेरा ख्याल प्रोग्राम में शामिल हुई हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, तो आप खैर हाजिर रहे ना, मैं तो प्रोग्राम मेरी तो पूरा दिन कॉलेज जाती रहती है 101 पे।
0: अच्छा गुड।
1: आपने दरमियान में जो ना गैर हाजिर रहे थे, लेकिन आप आ रहे हो तो तकरीबन मेरा तीसरा शो है आज। आप
0: दूसरा शो है? दूसरा है कि तीसरा, ये भी नहीं याद मुझे।
1: इतने कुछ रहे तो अच्छा किया आप आ रहे हो।
0: चले
1: बहुत शुक्रिया, रौनक लग जाती है आ जाते, इतना अच्छा लगता है।
0: चले बहुत शुक्रिया। तो अब आप बताएं कि कौन सी बात है जो आप कहना चाहती हैं एक सांस में?
1: बात में क्या, मैं यही कहूँगी कि जैसे कि बरसात का मौसम है सबको पता है, तो इसमें ये अपनी बस एहतियात करें, बच्चों को बाहर ना पानी में निकलने दे बारिश में, बड़े वक्त
0: नहीं। ये तो फिर आपने सांस ली, एक ही सांस में बात पूरी करनी है।
1: इतनी सी करूँगी। अच्छा। लाइन थी अभी, बहुत अच्छा लगा, बड़े को लेकर से बहुत बहुत अस्सलाम
0: वालेकुम सलाम,
1: सब सुनने वालों को निबरा रूज को भी लेकर से बहुत बहुत।
0: चले वालेकुम सलाम, आप जीती रहें खुश रहें। थैंक यू।
1: आपको सदा भार पे ओल्ड इज गोल्ड गाना जो ना, मैं भी अस्सलाम खान साहब का कोई सा भी प्ले कर दे,
0: कोई सा भी। चले मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। थैंक
1: यू। मैं सर मैच करूँ, अगर वो आपको ना मिल सका तो फिर ना?
0: हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह खान साहब को जरूर ट्राई करता हूँ। चले मैं जरूर देखता हूँ, मैं जरूर देखता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वेल ये थी हमारे से शमीमा पा, और उन्होंने एक सांस में बस इतना कहा कि एहतियात करें इस मौसम में, और एहतियात करने वालों की कभी हार नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप बताएं।
0: जी अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। कौन सा, आप कहाँ से?
2: फराज बात कर रहा हूँ।
0: फराज?
2: जी जी।
0: सिर्फ फराज या फराज अहमद फराज?
2: सिंपल फराज।
0: सिंपल फराज। अच्छा फराज, आपको याद है कि एक वक्त था कि जब आपके नाम के साथ बहुत सारे शेर मशहूर हुए थे?
2: जी जी ऐसे ही है।
0: ऐसे ही है। अच्छा उसमें से कोई शेर याद है आपको?
2: जी याद है।
0: कौन सा?
2: वो ये है कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी,
0: ये क्या,
2: ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा उमून वैसे दूसरे मिसरे में फराज आता था, लेकिन ये आपने जो सुनाया इसमें पहले मिसरे में आ गया।
2: मैंने पहले दो बार रिपीट किया ना, पहली बार आपको समझ नहीं, तो फिर दूसरे में मैंने फराज ऐड कर दिया।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, यानी कि वो फार्मूला आपने लगा दिया इस पे,
2: बस देख लें।
0: चलें गुड है। अच्छा तो प्रोग्राम सुन रहे थे आप?
2: जी सर सुन रहा हूँ।
0: तो फिर टॉपिक के हवाले से कोई बात करें जो आप एक ही सांस में मुकम्मल कर सकें?
2: मैं मुकम्मल कर दूंगा।
0: करें?
2: आप वो काम पूरा करेंगे?
0: देखिए मैं तो उस मुकाबले में शामिल ही नहीं हूँ।
2: ये आपने अच्छी कही।
0: ये अच्छी कही ना। तो
2: आपसे लास्ट टाइम जब बात हुई थी शायद आपको याद नहीं है, लास्ट ईयर दिसंबर में हुई थी मेरी बात।
0: लास्ट ईयर यानी कि 25 दिसंबर में?
2: जी
0: दिसंबर 25 में।
2: माय निकनेम चीकू?
0: मुझे याद नहीं मेरे भाई, अब बस उम्र का तकाजा ऐसा है कि
2: मैं इसको छोड़ चुका था बेसिकली डियर।
0: अच्छा
2: नीला मुझे दोबारा
0: वो गुड। अच्छा अच्छा आप वो वाले फराज हैं जो अनिला आपी के कहने पे आए थे? गुड गुड गुड।
2: अपनी वालदा दी गल ना मन्नी
0: है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बड़ी बात है जी। आप किसी का इतना एहसास करते हैं, इतना आप उन्हें रुतबा देते हैं, तो फिर बात कहें वो जो कहना चाहते हैं।
2: वो बात ये है कि आज मसूद मुझे खाना खिलाया, मैं अभी तक भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया।
0: बस बात मुकम्मल हो गई?
2: जी देख ले मेरे एक लाइन में सारी बात कर दी, अगर नहीं खिलाएंगे आप तो इट मीन्स ये कौन लोग होते
0: ये तो फिर दूसरी बात हो गई। अच्छा इस पे मजे की बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, मजे की बात ये कि अगर आज मसूद खुद भूखे हो तो फिर वो आपको कहाँ से खाना खिलाएं
2: मैं ज्यादा दूर नहीं रहता, फिर प्लान बनाए दोनों मिलके बैठ के खा लेते हैं।
0: चलें डन हो गया, डन हो गया, प्लान बनाते हैं और जो है इंशाल्लाह इसको प्लान को हम फाइनलाइज करते हैं, फिर आपको मैं खाना जरूर खिला दूंगा। ठीक है,
2: थैंक यू सो मच, खाना मेरी तरफ से होगा।
0: नहीं खाना जब भी हम खाएंगे इंशाल्लाह तो खाना मैं आपको खिलाऊंगा। तो अब आपने देखें आपने कहा ना कि अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ तो आप पूरी करेंगे,
2: बोला कि आज मसूद भी भूखा होगा तो क्या करेंगे, तो फिर भाई मेरा कहना नहीं बनता ना, भाई मेरा भूखा है तो फिर मैं क्यों।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, मैं बिल्कुल ऐसा मैं वो दूसरे भूखे की बात कर रहा हूँ, एक होते ना कुछ खा के भी भूखे रहते हैं लोग
2: वो कहते हैं ना कि पेट भर गया नीयत नहीं भरी।
0: हाँ नहीं तो ये वो बड़ी बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
2: तो
0: हम ऐसा कर लेंगे, अमेरिकन सिस्टम कर लेंगे ना। चलें ठीक हो गया, डन
2: हो गया, डन हो गया।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप जो आप कहेंगे हम सुन लेंगे। ठीक है,
2: ठीक हो गया,
0: चलें, अपना ख्याल रखिएगा फराज, दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। वालेकुम सलाम, जीते रहें, खुश रहें, थैंक यू। वेल जी ये थे फराज, और ज़िंदगी के नशेबो फराज में जो है वो इंसान क्या कहते हैं घूमता चला जाता है, चक्कर खाता चला जाता है, और कहता है कि हिट मी बेबी वन मोर टाइम।

आई एम सॉरी, नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से कह रहे हैं जी, कह रहे हैं जी मुन्नी बेगम की आवाज़ में गज़ल प्ले करते हैं, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। शाह जी अब क्या कहें आपसे हम।

0: आप लोगों को अल्लाह ताला सेहत दे, सलामती दे, और अपने घर वालों के लिए जिस मेहनत से आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले।
1: आमीन। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे और अपने सिवा कभी भी किसी का मोहताज न करे।
0: आमीन। बस हम तो ये दुआ करते हैं कि यारा हमें तो मांगना नहीं आता, तो बस तू देता ही जा, बस हमसे कुछ ना मांग, देता जा बस।
1: आमीन। अल्लाह की अमान और सेहत की बादशाही नसीब हो।
0: आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। तो सर बताएं कि
1: मसूद भाई, मैं कहना यही चाह रहा था, मैं प्रोग्राम स्टार्ट से सुन रहा हूँ।
0: मोहब्बत है आपकी।
1: मिसाल के तौर पे आपका अगर मौजू है ना
0: जी,
1: कि अपने अंदर की ताकत को कैसे पहचाना जा सके। मिसाल के तौर पे आपका मौजू है तो उसपे मैं यही कहूंगा एक सांस में कि मोहब्बत में और शराफत में सबसे बड़ी ताकत है इंसान के लिए। जो मोहब्बत में रह रहा है ना, जो मोहब्बत से रहता है और मोहब्बत से बात करता है, समझ ले वो अपने अंदर की ताकत को पहचान चुका है।
0: वाह। बिल्कुल ऐसी,
1: क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शराफत है।
0: बिल्कुल ऐसी है, बस ऐसी है, होता तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बस कुछ लोग नजायज फायदा या कमजोरी भी समझ लेते हैं इसको।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: तो बहरहाल अल्लाह ताला अभी कभी कोई ऐसा मौका ना लाए किसी पे कि हमें किसी की कमजोरी से फायदा उठाने का मौका मिले या कोई हमारी कमजोरी से फायदा उठाए। अल्लाह ताला बचा के रखें, बस अल्लाह ताला किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले हमें। ठीक है तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आप खूबसूरत सी बात के साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, तो हमें इस तरह दुआ में याद रखिएगा।
1: आपको हमेशा सलामत रखे।
0: आमीन।
1: और कामयाब और अच्छी जिंदगी के लिए ना सबसे जो अहम चीज है मसूद भाई, खुद से खुद में हिम्मत पैदा करना।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज यही होती है। बिल्कुल,
1: सबसे अहम है,
0: अहम ये,
1: क्योंकि इंसान लिए जिंदगी जो सब जरूरी दो काम ने मसूद पाए
0: जी,
1: तो इंसान लिए बहुत मुश्किल ने लेकिन जिंदगी लिए इंतहाई जरूरी ने। एक कर के खाना तो दूसरा जर के खाना।
0: वाह वाह वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए अपनी खूबसूरत सी बात के साथ। इस वक्त जी मेरे पास है ये वाला ट्रैक और ये है सेकंड लास्ट ट्रैक, और चले जी राहत साहब आपका टाइम खत्म हो गया था, अब हम मौका देंगे आतिफ भाई को। आतिफ भाई ने रिसेंटली नया एल्बम रिलीज किया है

वेल जनाब, ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका एक टाइम है, अपने टाइम पर आती है वो चीज़ और अपने टाइम पर चली जाती है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी बस अपने इख्तिताम को पहुँचने ही वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट पहुँच चुका है। और आई डोंट नो कि इख्तितामी लम्हात जो होते हैं वो हमेशा से कभी बयान करने वाले होते हैं और कभी नहीं होते, एनीवेज ये सब चीज़ें, ये गाने, ये टॉपिक, ये सब कुछ ये बहाना होता है आपसे बात करने का, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। इसको कोई इतना ज़्यादा भी आप दिल पे ना लिया करें कि जी ये टॉपिक कैसा है, ये टॉपिक वैसा है, ये जस्ट मैंने अर्ज़ किया जैसे कि ये बहाने होते हैं। असल मकसद जो है इसके जो पसे पर्दा है वो ये होता है कि बस किसी तरह इंटरेक्शन हो जाए, बात हो जाए आप लोगों की, और जो किसी के दिल में जो बात है वो बात शेयर कर लें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आपकी कौन सी बात, हमारी कौन सी बात आखिरी हो। और जो आखिरी बातें होती हैं ना वो बहुत गहरी होती हैं। फिर हम याद करने वालों को सिर्फ लफ्ज़ों में मिलते हैं कि ये लफ्ज़ उसके थे और इस मौके पर थे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर इन सांसों ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते के रोज़ रात 10 से 12 में। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।

0: is ahead. FM 101.1.
1: This is FM 101 for your spirit.
0: This is

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त, आपका मेज़बान, आपका भाई, आपका जिगर गज़नफर महमूद कियानी एक नई एपिसोड, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है, तमाम दोस्तों को कहेंगे खुश आमदीद। आज एक नए बैकग्राउंड के साथ आपके साथ आने राय है हम। अब हमारा जो है वो पुराना बैकग्राउंड हमने प्रोग्राम में शामिल किया। एक नया दिन, एक नई तारीख, 9 अगस्त साल 2026, 12:07 आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। कैसे हैं जी आप सब और आपकी जिंदगी कैसी गुजरी है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हमेशा की तरह एक मस्बत पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का ख्याल रखें, चूंकि आज हम जो हैं जहां हैं सिर्फ इस प्यारे वतन पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार जरूर अदा करें, चाहे जिस भी शोबे से आप मुंसलिक हैं। माह आज़ादी का जी आगाज़ हो चुका है, आज 9 अगस्त है। आप जानते हैं कि 14 अगस्त मिली जोश व जज्बे के साथ पूरे मुल्क में मनाई जाती है और इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को इतना खूबसूरत सजाया गया है, ग्रीन कलर की जो लाइट है। ये जबरदस्त मिली नगमा हम डेडिकेट करेंगे प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के नाम। इसके बाद लौट कर वापस आएंगे, आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा।

ओके जी, वेलकम बैक तमाम दोस्तों को, खुश आमदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ चाहता है आज के प्रोग्राम का टॉपिक आपके साथ शेयर करें। दोस्तों इस हवाले से काफ़ी दफ़ा हमने पहले भी बात की है, उधार के हवाले से हम बात करेंगे। मैंने काफ़ी दफ़ा इस पे बात की है कि उधार वापस मांगने का कोई बहुत मीठा सा तरीका आजकल के दौर में क्या होना चाहिए। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि सुनियो जो है मैंने आपको कुछ रकम दी थी वो वापस कैसे आप ले सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि अगर कोई शख्स, सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करता चलूं कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको कभी भी इस नहज पे ना लाएं कि आपको किसी से उधार मांगना पड़े। लेकिन चूंकि ये ज़िंदगी है और इस दुनिया में हर चीज़ जो है असबाब से जुड़ी है, हर करोड़ वाले को भी बाज़ू का कुछ पैसे चाहिए होते हैं और जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो वैसे चाहिए ही होते हैं, तो ज़िंदगी के मामलात इस तरह चलते हैं। इसको इस्लामिक से थोड़ा सा साइड पर रखे, वैसे आपने मुझे इसका जवाब देना है कि अगर कोई उधार मांगता है तो उसको बिना नाराज किए आप उसको कैसे इनकार कर रहे हैं, मतलब वो नाराज भी ना हो। कोई मीठी छुरी के हवाले से आपने मुझे बताना है कि क्या बहुत मीठा सा बहाना किया जाए या उसको बताया जाए कि यार मैं नहीं दे सकता या नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट पर्सन नाराज भी ना हो और आपने उसको इनकार भी करना है। और ये भी आपने नज़र में रखना है कि उस बंदे को पता है कि आपके पास पैसे मौजूद हैं। तब आज देखते हैं कि ढेर सारे दोस्त इस पे क्या रिस्पॉन्स करते हैं। एक दफ़ा फिर आसान करता चलो टॉपिक कि अगर कोई आपसे उधार मांगे आप उसको बिना नाराज किए क्या बहाना करेंगे ताकि वो नाराज भी ना हो और आपके जो रिलेशन है वो भी ना खराब हो, आप उसे क्या कहेंगे। और ये जहन में रखना है कि नेक्स्ट पर्सन को पता है कि आपके पास पैसे मौजूद हैं। SMS करेंगे जी 4471 पे, इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। और 12:30 तक बैक टू बैक बड़ा जबरदस्त किस्म का म्यूजिक फाखिर की आवाज को हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। और ये ट्रैक और इसके लिरिक्स क्या कमाल के हैं। ड्राइव करते अगर आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान से ड्राइविंग करें, अपना ख्याल रखें। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम दिन दोपहर बल्कि शाम के वक्त बहुत खूबसूरत था। कुछ एरिया में बारिश हुई, कुछ जगह पे नहीं हुई बारिश। खुशकिस्मत लोग हैं जो इस खूबसूरत से मौसम में पहाड़ों पे घूम आते हैं, कानों पे नींद ही नहीं छोड़ती है। बहुत सुस्त आदमी हूं जी मैं।

बहुत शुक्रिया जी। 4471 पे जो पहला मैसेज मानो ने किया जी, आपका बहुत शुक्रिया। सलाम भाई, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और टॉपिक के हवाले से भी प्लीज़ आप रिस्पांस किया करें और शहर का नाम लाजमी लिखा करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज़ कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। मानो आपका बहुत शुक्रिया, आपने 4471 पे मैसेज किया। अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रही है तो दोबारा ज़रूर मैसेज कीजिएगा, शहर का नाम बताना है आपने और जो आज हमने टॉपिक रखा है इस पे आपने गपशप करनी। और आज के प्रोग्राम में मजे की बात की है, जो कॉलर्स होंगे उनके लिए ये टॉपिक नहीं है, वो हम उनको उसी टाइम बताएंगे कि उनसे क्या गपशप करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना सेम हो जाता है सिलसिला। और कोशिश होगी कि जब हम लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करें 12:45 के बाद, तो उनसे कुछ अलग किस्म की गपशप हो। तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ से दोस्त हमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमेशा ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन होती है लाहौर से होती है, लाहौर वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद कुछ इस्लामाबाद से कॉल्स आती हैं, कराची से कम पार्टिसिपेशन होती है, सियालकोट से इक्का दुक्का, बाकी स्टेशन मेरे ख्याल से या तो उधर लाइट जाती है और हमारी ट्रांसमिशन नहीं जाती। बहरहाल दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो जो लोग हमें पार्टिसिपेट करते हैं। हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब रात 12 से लेकर 2 तक आपसे मेरी मुलाकात रहती है। और हमने पिछले कुछ 3-4 प्रोग्राम्स में से एक सेगमेंट शुरू किया है कि 1:45 मतलब 1:45 से ऑनवर्ड जो है हम शायरी सुनते हैं अपने उन दोस्तों से जो बहुत खूबसूरत शायरी पढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत कलाम लेके आते हैं, वो हम 1:45 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं और जस्ट अ कॉल और अपना नाम बता के वो शायरी सुनाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट जो हमारी एपिसोड गई थी बहुत ज़बरदस्त गई थी, अल्लाह करे कि आज भी हमें उस तरह का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिले। तो आपके SMS हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मोहम्मद अनीस पाक आर्मी से आपका ताल्लुक है, फ्रॉम मियाँ चन्नू से मैसेज कर रहे हैं जी, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, तमाम सुनने वालों को आपने सलाम दिया जी, गज़नफर अब्बास कियानी को मेरा सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, सलाम हमारी जानिब से उनको पहुंच गया। इसके अलावा भी अगर आप किसी को सलाम दुआ देना चाहते हैं जो हम यहाँ पर आपके खिदमत में मौजूद हैं, समरा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा ने मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट नाइट। लालियो खेड़े पास टुर पे हो, ये क्या था जी मैसेज का आगाज़ है। आप कहती हैं जी, सबसे पहले तो आपने कहा जी मुझे पता है कि आपको गज़नफर महमूद कियानी कहते हैं, तो सुन ले मुझे कहते हैं समरा मुग़ल राइटर साहिबा। चलें जी, बहुत शुक्रिया राइटर साहिबा, आपने फिर कॉल कर रही है हमें 1:45 पे अगर आप अपना लिखा हुआ कुछ सुनाना चाहती हैं तो। इसके अलावा आपने वो जो हमने ट्रैक प्ले किया था GT रोड पर ब्रेकर लग गया, उस पर कॉमेंट्स किए हैं और आपने कहा पैसे हों तो अलग बात है मगर ना हों तो अलग। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपके पास हैं तो देने की जल्दी करनी चाहिए। और इसके अलावा आपने अपनी माँ जी की सेहत के हवाले से कुछ अपडेट्स दी, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे जी, आमीन। बहुत सारी दुआएं जी सबके वालदैन को, अल्लाह पाक सेहत दें। और समरा थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। इसके अलावा हरिपुर से हमारे साथ अरीबा मौजूद है। नहीं जी, हम हरिपुर वाले लिसनर्स को नहीं भूलते, लेकिन हरिपुर से रात के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन नहीं होती ना अल्लाह लियो, इस वजह से मैंने आपसे कहा कि बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, आप ज़रूर इस टॉपिक पे फीडबैक दीजिएगा। मानो को टॉपिक समझ नहीं आया पेशावर से जी, मैं समझा देता हूँ। अगर कोई बंदा आपसे उधार मांगता है, आप उसको नहीं देना चाहते, आपके पास हैं भी, आप उसको नहीं देना चाहते, तो आप कैसे इनकार करेंगे, क्या बहाना करेंगे? और बहाना ऐसे करना है कि नेक्स्ट पर्सन आपसे नाराज़ भी ना हो। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, आपने इसमें लाजमी फीडबैक देना है जी। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। इसके अलावा डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपके भी मैसेज का बहुत शुक्रिया, लेकिन टॉपिक के हवाले से आपने फीडबैक नहीं दिया। आई विश कि जितने भी दोस्त इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे होते हैं आप लोग टॉपिक से रिलेटेड लाजमी जो है फीडबैक दिया करें। RJ हदीका खान हमें सुन रही हैं जी, आज कोई 150 साल बाद, बड़े अरसे बाद ये खुद भी प्रेजेंटर रही हैं और आज इन्होंने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया हदीका आपका भी। और आप भी रिसेंटली कोई रेडियो दोबारा ज्वाइन करने का आपके हवाले से न्यूज़ सुनी है, बेस्ट ऑफ लक जी उसके लिए भी। फेसबुक पे चलते हैं, स्टार्ट के कुछ मैसेजेस हम शामिल करेंगे कि कौन हमारे साथ मौजूद है। facebook.com/FM101 Channel Pakistan हमारा ऑफिशियल फैन पेज। इस पोस्ट को अपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। मलिक साहब ने मैसेज किया लेकिन ID का नाम आपने कोदा लिखा है, अल्लाह लियो खेड़े पास से टुर पे, क्या मतलब? माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी हसीन सूरत आपको दी है और आपने ID का नाम लिखा है जी, कोजा मलिक। अस्सलाम वालेकुम भाई, बदर मुल्तान से मौजूद है, शो अच्छा है, मलको का गाना लगा दे, मैं ट्राई करता हूँ मेरे दोस्त। जिंदगी ने मैसेज किया, दिस सॉन्ग इज़ अमेजिंग, बहुत शुक्रिया जी। आपने कहाँ से मैसेज किया कोई पता नहीं, हदीका खान आपने
फेसबुक पे भी मैसेज किया है, थैंक यू सो मच आपकी पार्टिसिपेशन का। ये थे जी कुछ facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान के मैसेजेस। साथ साथ में आपके ना जो आप हमें SMS करें 4471 पे, वो पैगाम हम शामिल कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक पे हम गपशप करेंगे, कॉलर्स के लिए ये टॉपिक नहीं है, जब कॉलर्स आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि उनके साथ हमने क्या गपशप करनी है।

इस ट्रैक के बैकग्राउंड में आपने जी बकरियों की आवाज सुनी होगी। हमारे आजकल एक कॉलर भी हैं, वो भी चाचा इमदाद बकरियों वाले, वो कॉल करते हैं ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में और वो कहते हैं जी चाचा इमदाद गल करना आना जी बकरियां आला। तो उनको मैं कल भी कह रहा था कि बकरियां आला ना क्या करो अल्लाह ले। अली अदर की आवाज़ में बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रैक दोस्तों। आप 4471 पे हमें मैसेज कर रहे हैं, इसके अलावा कॉल जो है वो 1:45 के बाद मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। वैसे हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि आज के दिन में ख़ास क्या है, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, आप हर दिन एक नई चीज़ है। और एक चीज़ आज तक जितनी मेरी उम्र हो चुकी है, ये तो एक डेफिनेट चीज़ है कि सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होता। मतलब ठीक इन द सेंस कि आप ये सोचें ज़िंदगी में कि सब कुछ स्ट्रीमलाइन होगा, आपकी गाड़ी आपके बाइक में पेट्रोल जो है वो उसकी टैंकी फुल होगी, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बिल उसका ज़ीरो होगा, आपका जो अकाउंट है उसमें हर वक्त पैसे मौजूद होंगे, सेहत के मामलात ठीक होंगे, घर वालों की सेहत के मामलात ठीक होंगे, आपके जहां आपका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है उसमें मामला ठीक देंगे ना। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो एक चीज़ तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, खासकर मर्द की जेब में पैसे नहीं है, तो एक ना साइकोलॉजिकली वैसे ही बंदा टेंशन में रहता है। हालांकि उसने घर से बाहर नहीं भी जाना, कोई गेस्ट नहीं भी आना, फिर भी ये चीज़ें चलती रहती। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे मौजूद हैं, खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़ते हैं या आपने कहीं आना जाना है तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो आजकल के दौर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी जो इनकम के ज़राए हैं उनको ज़्यादा करना। मैं जब यह बात आपको कह रहा हूँ, मुझे खुद से शर्म आ रही है कि खुद तो बस जॉब पे ही फोकस है, बाकी चीज़ें चूँकि देखें जॉब से ना मामलात पहली से 15 तारीख तक ना आपका जो टाइम है बड़े सुकून से गुजरता है, उसके बाद आपको टेंशन शुरू होती है। तो आजकल की इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये सारी बातें मैं आपको नहीं, मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ कि अपनी हमें स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। और आपने अपने जो रेगुलर आपके जो अमाउंट आ रही है, चाहे किसी जॉब से आ रही है या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा मज़ीद मेहनत करके स्किल्स डेवलप करके एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करनी है, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि आपके जो घर वाले हैं वो भी आपकी वजह से सुकून रहें। और एक चीज़ जो हमेशा ज़िंदगी में आपने अप्लाई उसमें करना है कि कोशिश ये किया करें जिस चीज़ के लिए आप तरसे हैं ना, कोई नेक्स्ट पर्सन जो है उसके लिए उसको अगर आप में हिम्मत है या अल्लाह ताला आपको इसकी जो है वो आपको कैपेबिलिटी देते हैं, तो आप उसको उस हवाले से परेशान ना होने दें। जैसे आप अपने छोटे बहन भाइयों की हर चीज़ हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं, आप एक सर्टन एज में उनको बताते भी हैं कि हमारे टाइम में तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलती थी लेकिन हमारी वजह से, या एक अगर आप उनको नहीं भी गिनवा रहे लेकिन फिर भी आपकी एफर्ट की वजह से उनको सुकून मिलता है, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मज़ीद ज़राए जो हैं वो तलाश करें, स्किल्स डेवलप करें। ऑनलाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ट्रेडिंग एक कारोबार है जिसमें मैं आपको मशवरा तो नहीं दूंगा, चूँकि उसमें सुना है बहुत जल्दी आप ढेर सारे पैसे कमा भी लेते हैं और बहुत जल्दी ज़ीरो भी हो जाते हैं। बहरहाल अपने स्किल्स पे आपने ढेर सारा काम करना है। तो दिन में ख़ास क्या है ये हम सोचते नहीं हैं, बस ये गिले करते रहते हैं आज तक इसी कुछ भी नहीं किया। आप ये सोचें कि हमें एक दिन मिला है, अल्लाह ताला ने हमें एक मज़ीद एक दिन सांस दी है, और हर लम्हा जो है ज़िंदगी दोस्तों क्या है, हर लम्हा ज़िंदगी है। तो ये थोड़ा सा अपने जहन को आप बार बार बावर करवाया करें कि ये जो आज दिन है हमारे पास, ये दोबारा आपके पास नहीं आएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि अपना हर पल ऐसे गुजारो जैसे कि आखिरी पल हो। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप हमेशा सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे आप सबको, आमीन। लेकिन इसको अगर लाइट नोट में हम बात करें ना कि ज़िंदगी की कुछ खूबसूरती जो है उसको आप अपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखा करें, हमेशा मुस्कुराया करें, मुस्कुराने पे भी आज हम गपशप करेंगे। और ये डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें ना आपके मूड पे, और आजकल की जनरेशन का मूड उन पे खुद डिपेंड नहीं करता, वो किसी दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप उसको कोई भी नाम दे दें, मनपसंद शख्स कह लें, आपका बॉस कह लें या आपके जो मैनेजर हैं उन पे कह लेंगे, वो आपके साथ ठीक हैं, आपके साथ मामला ठीक है तो आपकी सारी चीज़ें ठीक है, अदरवाइज ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो ख़राब होती हैं। तो अपना मूड जो है
उसको अच्छा रखा करें, जॉब के साथ सिंसेयर रहें वो 8 घंटे जब तक आप ऑफिस हैं, क्योंकि भाईजान दिन रात भी अगर आप एक कर देंगे ना, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आपको कभी भी कह सकती हैं कि जोड़े कल तो आखिरी दिन है। और इसके बाद मूड की बात है, तो मनपसंद शख्स जो है ना वो उसके पास बड़ी ताकत होती है, मीलों दूर रह के आपका मूड अच्छा भी कर सकता है, तो स्ट्रेस से रख के तो अद्धा साइको भी कर सकता है। इसरार का गाना आपको सुनाने जा रहा हूँ जी, ये पुठवार रीजन पिंडी गुजर खान रवात वाले दोस्तों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है, आप सुने आपको मज़ा आएगा। ये क्या क्या रहे हैं सुने, फिर वापस आते हैं, फिर आपसे गपशप करेंगे। 12:45 से ऑनवर्ड हमने कॉल शामिल करनी है 0519202540051111001, बंदा ना चीज़ को कहते हैं गज़नफर महमूद क्यानी अच्छो बौना।

0: मोइन हमारे साथ मौजूद है। मोइन मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया आज़ाद कश्मीर से आपने पार्टिसिपेट किया। आज काफ़ी अरसे बाद जी आपसे बात हुई मोइन। आप तमाम दोस्त जानते हैं जो रेगुलर सुनते हैं जी, हमारे रेगुलर कॉलर थे और काफ़ी अरसा गायब रहे। आज इन्होंने कॉल की कश्मीर रावलाकोट से, आपने पार्टिसिपेट किया। मोइन मेरे दोस्त, आपको बहुत शुक्रिया। आज की पहली कॉल, देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम गजन परसाई, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, कैसे आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जफर अली भुट्टो बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से।
0: इस्लामाबाद किस जगह से कॉल किया मेरे भाई?
1: मैं बर्मा पुल से बात कर रहा हूँ, रहमान इनक्लेव में मैं बॉडी गार्ड हूँ।
0: अरे क्या बात है, बड़ी महंगी जगह पे आप बॉडी गार्ड का काम करते
1: जी, जी।
0: ये बर्मा दोबारा पानी तो नहीं ज्यादा आया उस जगह पे?
1: नहीं, बारिशों में तो ये नाले बह आते हैं।
0: ठीक है। अच्छा, अगर कोई उधार मांगता है आपसे तो आप कैसे इनकार करते हैं अगर पैसे हो भी आपके पास?
1: तो माजरत कर लेंगे।
0: अच्छा, माजरत मतलब सिंपल कहेंगे यार नहीं दे सकते, और अगले बंदे को पता भी आपके पास पैसे हैं?
1: आराम से बोल देंगे, भाई जान हमारे पास इतने पैसे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से, नाराज भी नहीं होना है आपको।
0: क्या बात, बड़ी मीठी जुबान से आप मना करेंगे? हाँ
1: आराम से नाराज भी ना हो,
0: ठीक हो गया,
1: समझ भी जाए।
0: क्या बात है,
1: दोबारा वो मांगेगा भी नहीं।
0: ये भी है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप बर्मा से हमारे साथ मौजूद थे। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
0: असर जी क्या हाल है आपका?
2: ठीक ठाक है जी, बहुत अच्छा हाल है जी, बहुत अच्छी जिंदगानी गुजर रही है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है
0: सर जी। खुश रहे। कैसे मना करेंगे किसी को कि उधार नहीं देना?
2: अच्छा जी, उधार देने आ गया वो?
0: आ गया
2: भाई मेरे पास तो मेरे पैसे मुझे पास नहीं है, आप मेहरबानी करे तो, आपकी बहुत मेहरबानी, मेरे पास पैसे नहीं है तो किसी और से ले ले भाई आप।
0: नहीं मुझे पता है आपके पास कोई है कोई 1.5-2 लाख रुपए तो उसमें से उधार दे देना, वो मांग रहा हूँ
2: भाई। वो तो मैंने ना आपकी भाभी को दे दिया वो मैं पिछले हफ्ते जो कमेटी निकली थी ना मेरी तो मैंने उनको पकड़ा दी है, वो आप मैं भी मांगता वो मुझे नहीं दे रही तो मैं तुम्हारे से कैसे लेके दूंगा?
0: ये सबसे मजा क्या था, मतलब भाभी को दे दिए और मैंने भी नहीं दे रही तो तुहानू क्या मैं देवा में है?
2: देखो जी तेरे ऐसे तरह ये ना, इतने मेरा भाई दादी मेहरबानी किसे हो, वसीम को ले लो या नदीम को ले लो यार, कोई गाल नहीं, दे देंगे मैं दे देंगे तू वो तो कोई ना।
0: क्या बात है जी,
2: कोई गाल नहीं, घबराई ना मेरा वीर, ते कोई गाल नहीं, तू जरूरत हैगी ना तेनू,
0: हां
2: इसको जा उन मेरा नाम ले, ठीक है मैंने मैं शहजाद ने भेजे है
0: आपकी कॉल का, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। 0511111001 देखते हैं कि नेक्स्ट कॉल हमारे दोस्तों, फेसबुक पे भी पोस्ट मौजूद है, अगर आप सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसको लाजमी दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमें ज्वाइन कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन बात कर रहा है? लाहौर से साजिदा बात करिए। साजिदा आपके लिए ना लाइव कॉल पे थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज है। मैंने कहा कि लाइव कॉल पे ना आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज है कि आपने जो बात का जवाब देना है ना वो गुनगुनाते हुए। लाहौर से साजिदा बात करिए। साजिदा आपके लिए ना लाइव कॉल पे थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज है। मैंने कहा कि लाइव कॉल पे ना आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट

0: आपने ना गुनगुनाने के अंदाज में उस पर जवाब देना है, तो देखते हैं कि ये स्किल जो गुनगुनाने की है मेरी तो बहुत ही बुरी है माशाल्लाह से, आपकी देखते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी है। मीनवाइल जी, मोहम्मद अनीस साहब मियां चन्नू से उधार बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में वही बंदा दुश्मन बन जाता है। बस ये कह दूँ कि मेरे पास नहीं है। अनीस भाई बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा पार्टिसिपेट किया। मानव ने पेशावर से पूछा था, टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, हमने आपको बताया, फिर मानव गायब होगी। चलें जी नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, गुलनफर भाई कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहा
1: है? मलिक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन।
0: मलिक इरफान साहब मंडी बाउद्दीन से। सर जी, आपको पता है ना कि लाइव कॉल पे आज कैसे बात करेंगे आप?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, बहुत मजा, अबे अब तो मजा आने वाला है।
0: मजा आने वाला ना, तो ये अब आपने मुझे ये बताना है कि कोई थोड़े को उधार मंगे तो तुम किवें उन्हें इनकार करोगे? गा के हाँ,
1: मेरे पास ये नहीं है

0: क्या बात है अरफान साहब, आपने तो मैसेज लौट लिया, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जैसे आपने जी आज के दिन रिस्पॉन्स करना है 0511111001, 12:52 हुआ चाहते हैं, बंदा इन चीज़ को कहते हैं जी गजनफर महमूद क्यानी, ताल्लुक मेरा जी जन्नत नज़ीर से जिसे कहते हैं कश्मीर, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अंसारी साहब आप तो वैसे माशाल्लाह बड़ा प्यारा गुनगुनाते हैं।
1: नहीं नहीं मतलब मैं विड्रॉ हो रहा हूँ माशाल्लाह, मलिक इरफान आपका मुकाबला जीत गया।
0: नहीं अभी तो मुकाबला शुरू है, तो अंसारी साहब बताए ना आप कैसे इनकार करेंगे उधार वाले को।
1: यार मैं तो सिर्फ सॉरी
0: साहब जानी नहीं लगाया आपने, सॉरी जानी बहुत जजा देगा, माफ करने वाले से ना अल्लाह उसको बहुत पसंद करता है, आपके बहुत अजर बुलंद होंगे। अपना मजीद कुछ कहना चाहेंगे अंसारी साहब?
1: 1,000 से लेकर 10 लाख तक का मेरा
0: लोगों के ऊपर, अल्लाह सानिया करे अल्लाह उनको हिदायत दे के आपके पैसे वापस करें। अंसारी साहब
1: मगर अब मैंने पक्का वो कर लिया है अपना जाने मेरे कि 1-2 हज़ार से ऊपर नहीं दूंगा, और जो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि ये देने वाले ही नहीं है तो उसको मैं कह देता हूँ सॉरी
0: सॉरी। ठीक हो गया अंसारी साहब, ख्याल रखे होना ठीक है, अरफान साहब ने ना महफिल लूट ली। चले अभी देखते हैं और कॉलर भी आते हैं, गपशप करते हैं ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। 54 मिनट हो चुके हैं जी, 12:00 आप सुन रहे हैं जी 101 इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्टूडियो से, बंदा ना चीज को कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, ट्रांसमिशन को आपके लिए डिजाइन एंड प्रोड्यूस करती हैं मिस दफरानी, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा और आपका मुलाकात रहता है, बल्कि रहती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, एक ही सुनाई जा रहे हो, अल्लाह अलैहो कॉल आपकी मिल चुकी है, थोड़ा सा ध्यान इधर रखा करें ताकि हमारी आपसे बातचीत हो जाए। 0511111001 पे आप लोग हमें कॉल करें, और ये कॉल देखते हैं जी कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अरीबा हरिपुर से, हमेशा की तरह आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है अरीबा। हाँ थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो आ जाएगी, हाँ कुछ गुजारा कर रहे हैं। अच्छा अरीबा क्या हाल है आपके, गुनगुना के जवाब देने आपने।
2: मैं ठीक हूँ, मैं कैसे गुनगुनाऊँ, मुझे तो गुनगुनाना आता ही नहीं।
0: अच्छा आपको गुनगुनाना नहीं आता, ठीक है जी, हम बहुत ज्यादा किसी को जोर नहीं दे

0: तो बताएं कैसे मना करेंगे उधार देना। अच्छा, कोई मना नहीं होता, मतलब आपको नुकसान ही होता है।
1: हाँ जी, जब उन्हें पता है कि मेरे पास पैसे हैं तो फिर ले जाती हैं।
0: क्या बात है जी, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप पैसे दे देते हैं, वापस भी मिलते हैं कोई नहीं?
1: मेरी फ्रेंड जो है वो वापस भी कर देती है, लेकिन आज तक मेरे बाबा ने मेरा उधार वापस नहीं दिया कभी।
0: तो बाबा क्यों उधार वापस, वही तो आपको देते हैं आप या खुद जॉब करते हैं आप?
1: नहीं, चले वो देते हैं, लेकिन वो मेरे ही पैसे हो गए ना जब वो मेरे पास
0: आते हैं। ये है बच्चे जो है ना, इनको पैसे दे दें तो ये ईद के पैसे भी ना अगले साल ईद से पहले भी गिन के होते हैं, हमारी ईद के पैसे दे दें।
1: बिल्कुल, यकीन करें वो हक लाल के हमारे पैसे हमारे नाम के दिए हुए होते हैं, तो फिर हमारे ही हुए ना। तो आज तक उधार अपना वापस नहीं मिला, बड़ा ही गम रहता है जब भी उधार के बारे में टॉपिक होता है तो मुझे तो अपना उधार याद आ जाता है,
0: अपना याद आता है। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपने ढेर सारा, ठीक है
1: जी। आपने भी जरा गुनगुना के बताना है सबको भी, आप किस तरह
0: कि मैं किस तरह मना करता। ठीक है जी, ठीक है, करते हैं उसका कुछ, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। हरिपुर से आपकी कॉल थी दोस्तों। 4471 पे मैसेजेस की जो तादाद है बहुत ज़्यादा कम होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और आपके पास सक्सेस है SMS करने की, तो बराए मेहरबानी आप 4471 पे भी मैसेज किया करें। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बहुत खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर। एक कॉल शामिल करते हैं, फिर उसके बाद लाला तौला की आवाज़ को प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और फिर वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे
2: हैं?
0: आपके दो नाम है, हमें बस वो बता दें जो सब आपको उस नाम से पुकारते हैं।
2: फिजा
0: आपका नाम है? फिजा कहाँ से कॉल किया आपने?
2: कश्मीर से
0: कॉल किया। थैंक यू सो मच फिजा। कश्मीर किस जगह से कॉल किया आपने?
2: रावलाकोट से।
0: अच्छा, रावलाकोट से की है। अच्छा फिजा, टॉपिक सुना आपने?
2: हाँ जी।
0: उसके दो वो हैं, हम लाइव कॉलर से ना बात करें कि अगर वो गुनगुना के जवाब देंगे तो आप इजी हैं इसमें या आप नहीं करेंगी?
2: मैं तो सैंपल बोलूंगी, एक्सक्यूज मी।
0: अच्छा, आप सिंपल जवाब दे देंगे कि एक्सक्यूज मी, किसी और स्टॉप पे चले जाओ।
2: हाँ जी,
0: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी?
2: नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है।
0: बहुत शुक्रिया, चलो अल्लाह हाफिज़ जी। ये मैं ये कभी किसी कॉलर को नहीं कहता कि आपका बैलेंस खत्म हुआ है, ये सिग्नल ड्रॉप हो गया है। ले जी, लाला तौला की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं? थोड़ा सा ट्रैक सुनेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, मजीद कॉल शामिल करेंगे, चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है।

लाला तौला की ये बड़ी जबरदस्त लाइन है जी। आपने जिंदगी में देखा होगा कि सारे झगड़े जिंदगी तक ही रहते हैं, बाद में लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था या ये चीजें बड़ी ठीक थी वो वैसी थी, और क्या फायदा ऐसी चीजों का जो इंसान को बाद में याद आए। अपने करीबी जो रिश्ते हैं उनका बहुत ख्याल रखें। मैंने टॉपिक जब अनाउंस किया था आपसे, ये कहा था कि इसको एज ए एंटरटेनमेंट हम लेके चलेंगे, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि बहुत करीबी जो रिश्ते हैं आपके, ये अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा दिया हुआ है और आप किसी की परेशानी में देखें और आपके पास इस्तेताद भी हो तो आपने उसकी लाजमी हेल्प करनी है, बजाय ये चीज़ बिना सोचे कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। रिटर्न में अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर नवाजेंगे। तो ये अल्लाह ताला सुने क्या कहते हैं कि सारी जिंदगी, सारे झगड़े जो हैं वो ज़िंदगी तक हैं।

0: बड़ा जबरदस्त ट्रैक है जी। मैंने खुद व्हाट्सएप पे एक स्टेटस पे एक दोस्त ने लगाया था, वहां से सुन के मैंने कहा जी आज ये हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से बड़ा अच्छा ट्रैक हमें मिला आज। रिजवान सदीकी उर्फ फौजी फ्रॉम बहिरा जॉब इन इस्लामाबाद, क्या नहीं भाई वापस लेने का तरीका बता दें, कितनी दफ़ा 1,000, 10,000 और 2,000 माफ कर चुके हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल लिखी है रिजवान भाई। तुहानू अगर कोई इस तरह की शय नज़र आई ना, कोई दम दरूद इस तरह था कि वापस कैसे आ गए, तो आपने मुझे भी बताना है। रिजवान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं फौजी शबीर लाशारी साहब राजनपुर से हूँ और अभी आप रवाद से बात कर रहे हैं, पहली बार आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, कोई सॉन्ग ही प्ले कर दें सराइकी में, ज़रूर प्ले करूंगा जी। बहुत शुक्रिया आपका, जो दोस्त हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, आपकी मीठी सी मोहब्बत का प्यार का बहुत शुक्रिया। अब्दुल नूर हाशमी साहब लाहौर से सुन रहे हो, बहुत शुक्रिया तुहाडा। अली रजा हमारे साथ कोटली आज़ाद कश्मीर से मौजूद है भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात किया करें, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, जज़ाकल्ला, बहुत शुक्रिया अली रजा भाई। मेरे दोस्त कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले जो स्टेप आपने करना है, आपने रीडिंग करनी है, आप अखबार पढ़ा करें, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर वो बुक ले लें, आप वो पढ़ें, फिर आप शीशे जो मिरर है घर में उसके सामने खड़ा होकर ना वो ऊँचा ऊँचा पढ़ा करें और झिझका मत करें। दो चार लोग जब आपके सामने आए तो बात आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से किया करें, कम बात करें लेकिन अच्छी बात करें। सबसे पहला काम आपने रीडिंग वाला करना है अली रजा, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप कोई अखबार इसके अलावा कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, ये आप करें। साथ साथ इंशाल्लाह मैं हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको लाजमी बताया करूंगा। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन मौजूद है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, आपने 4471 पे मेरी बात सुन के मैसेज किया, मजीद भी मैसेज करें ताकि यहाँ पे भी रौनक लगी रहा करें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, चलो जी कोई बात नहीं, ये हमारे रेगुलर लिसनर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: सर जी क्या हाल है,
1: क्या नहीं बोल रहा हूं,
0: क्या नहीं साहब ठीक है, सेहत ठीक है आपकी, सर मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप कैसे गुनगुना के जवाब देंगे।
1: जी नहीं, मैं गुनगुना के तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको फार्मूला एक बताऊंगा।
0: अच्छा फार्मूला बताना
1: सर, और उस पर मैं अमल भी करता
0: हूँ। सर बताएं बताएं फार्मूला।
1: देखिए अगर आपने आपको आपसे किसी ने 20,000 मांगा है ना, तो आप उसको बोले यार आप ये 5,000 ले लें, वापस नहीं करने, वो उसमें खुश हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: खुश ही करना है ना किसी को, इसी तरह उसकी परसेंटेज देख ले, जितने वो मांगे उससे उस हिसाब से उसे कुछ देकर उसे कहे यार ये आपके हैं, क्योंकि उसने वापस तो वैसे भी नहीं करना है।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: तो वो आपका खुश भी हो जाएगा बंदा, तो आप भी उससे ज्यादा रकम से बच जाए।
0: ठीक हो गया, चले बहुत तो, शुक्रिया सर, नेक्स्ट सेगमेंट में कीजिएगा कॉल, ठीक है
1: जी, ठीक है,
0: बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने जी साहब। तो रिजवान भाई आप वो पूछ रहे थे ना कि क्या फार्मूला होना चाहिए, तो नजीर साहब ने फार्मूला आपके साथ शेयर कर दिया, आप लाजमी इस पे अमल कीजिएगा। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी, जी बिल्कुल आ रही है, कौन बात कर रहे
2: हैं?
0: मोइन जट साहब, माशाल्लाह फाइनली कॉल मिल गई आपकी। हाँ
2: फाइनली मिल गई है, तो बाकी शुक्रिया कॉल पिक करने के लिए। टॉपिक तो आपने बहुत अच्छा रखा, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि आस पास थोड़ा खतरा है जूते पड़ने।
0: नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, तुसी अगर आपको इजी नहीं है तो मैं बिल्कुल मुसल्लत नहीं करता, बस कोई बता दें कि कैसे इनकार करेंगे आप।
2: इनकार तो नहीं किया जाता, आपको पता है फ्रेंड सर्कल में तो ऐसा हो जाता है, तो आपको छोटी सी बात शेयर करूंगा इस हवाले से ना, कि एक मेरा दोस्त है वैस, तो उसने ना मुझसे पैसे लिए हुए थे, तो उसने मुझे 20,000 लिया हुआ था, तो मुझे दिया ना उसको सैलरी मिली, तो उसने वापस किए। तो फ्रेंड सर्कल में ये चक्कर होता है कि एक देता है और दूसरा उधर से आ जाता है, उसको पता होता है कि इसके पास पैसे हैं, तो फिर इनकार नहीं बंदा कर सकता। तो मेरा एक और दोस्त है हमजा, तो वो आया मेरे पास पैसे मांगने के लिए, तो कहता यार मैंने बाइक लेनी है तो पैसे थोड़े कम पड़ गए तो मुझे, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, जैसे कहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसे
2: तो बिल्कुल या कि को 10 या 5 के तक बात अगर निपट जाए तो ये ज्यादा अच्छी है।
0: चलो चलो
2: तो ये बात है, बाकी सब सुनने वाले को बहुत आप
0: जजाकल
2: बहुत बहुत बहुत अच्छा शो और काफी टाइम के बाद सुना है आपको, पता है कि काफी मतरबियत थी।
0: अल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियां करे। मोइन भाई बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा,
2: ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। 1:15 हो चुके हैं दोस्तों, कुछ फेसबुक के भी मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और 1:45 के बाद हम शायरी सुनेंगे बहुत अच्छी अच्छी आवाजों में। ये वाला ट्रैक

डॉक्टर किश्वर आरिफ साहबा हमारे साथ रावपिंडी से मौजूद हैं, कहते हैं जी मासूम सी शक्ल बनाकर प्यार से कहूंगी सॉरी अभी नहीं दे सकती मैं उधार, आरजे आपके लिए बहुत सी दुआएं, नाइस यो, थैंक यू सो मच जी। इसके अलावा जी ऑनलाइन स्टोर की एक आईडी से मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम क्यानी ब्रो, वालेकुम सलाम ऑनलाइन स्टोर ब्रो, आप माशाल्लाह कोई ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं तो ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। उस्मान बिन इमदाद साहब हमारे साथ मौजूद है, जद्दा से आप सुन रहे हैं जी, और मैं तो उधार दे देता हूँ और पूरी लंबी लिस्ट बनाई होती है मैंने और एक्सेल शीट में 90% वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं करते। यहाँ ठीक है जी, आपने कहा यहाँ पर प्रदेश में एक दूसरे के काम आना चाहिए जो किसी के लिए कर सकें और वो करना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस्मान भाई इसमें तो कोई शक नहीं, जो प्रदेश में लोग मौजूद होते हैं उसका ऑब्वियसली हर फैमिली में ना ख़ानदान वालों को पता होता है कि यार कहीं से ना मिले इस बंदे से ज़रूर मिल जाएंगे चूँकि बाहर होता है। तो आजकल एक चीज़ का दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि खुद साख्ता आजमाइश, खुद साख से चीज़ें सोच लेना, इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें कि आजकल का जो दौर चल रहा है वो ऐसा टेन्योर है कि हर बंदा अपने मामलात अगर चला लेना तो वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं हमेशा बिल का रोना धोना करता रहता हूँ, किराए बहुत महंगे हैं, हाउस रेंट बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों की फीसेज और बेतहाशा चीज़ें। तो इन केस अगर इस दौर में भी अगर कोई भी बंदा आपसे किसी हवाले से इनकार करता है तो बराए मेहरबानी ख़ुद सोच के आपने कुछ नाराज़गियाँ नहीं पालनी कि यार उसने मुझे ये नहीं किया है, मुझे फैसिलिटेट नहीं किया। बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी बाज़ औक़ात इंसान ऐसे प्रॉब्लम्स में होता है वो नहीं आपके साथ कुछ हेल्प कर सकता, तो ये चीज़ आपने मद्दनज़र ज़रूर रखनी है। फातिमा नूर हमारे साथ मौजूद है, फातिमा बहुत शुक्रिया, फ़र्स्ट टाइम आपने मैसेज किया है, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक चीज़ आज मैं आपसे लाजमी कहूँगा दोस्तों, उस पर आपने ना अमल करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में इस हवाले से बहुत नुकसान हुआ है, तुझे नहीं करना है।

0: सबसे मुश्किल काम है जी नाम बताना, आप नाम बताएंगे तो फिर घर कैसे जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ ये है कि आपको बाजुकात ना आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस कुलीग या फैमिली में भी कुछ लोग कहते हैं कि यार एक बात कहूँ अगर बुरा ना लगे तो तुसी उत्थे ही मना करना है, भाई जी मैंने लगेगा बुरा, मुझे बुरा लगेगा आपने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी। क्योंकि ये एक सेंटेंस शुरू में बोल के ना तो नेक्स्ट पर्सन जो है आपका जीरो कॉन्फिडेंस जीरो कर देते हैं, मतलब आपको ऐसी बातें कह जाते हैं कि आपको बड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर कोई कहे कि यार एक बात कहूँ आपको बुरा तो नहीं लगा, आप कह नहीं जी भाईजान तू ना कहे मैंने बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि अक्सर अब जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना तो उनको आप मना कर दें अपनी लाइफ का ना, एक प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज, अपनी ना कुछ बाउंड्रीज सेट करें। मैं सच बताऊं मैं आज तक नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान उठाया। एक तो इनकार नहीं होता किसी चीज़ पे, ऑफिस में एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, मतलब ज़िंदगी के हर फील्ड में, मतलब मुझे बहुत डांट पड़ती रहती है, माँ जी से भी, घर वालों से भी, दोस्त भी कहते रहते थे। बल्कि एक मेरे हमारे आरजे हैं अवैस खटक, वो मेरे साथ प्रोग्राम हाउस एट में होते थे, तो स्टार्ट जब उन्होंने किया हम लाइव कॉल शामिल करते थे तो मुझे कहते थे कैरी साहब अगर किसी कॉलर ने आपको ये कह दिया ना कि कैरी साहब आप आ रहे से मुझे दो कप चाय ला दें तो आप उसको कहेंगे जी आप होल्ड करें मैं तो उन्हें चाह आठ देना। तो ये एक चीज़ है कि सेट योर बाउंड्रीज, आप अपनी लाइफ में सेट करें कि यार हर बंदे को पता हो कि मैं इसके साथ ये बात की तो आगे से मुझे ये जवाब देंगे या आम छोटी सी अल्फाज में कहूँ कि पढ़ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चूँकि ऐसी बातें होती हैं कि क्रिटिसिज्म जो है, देखें अगर वो पॉजिटिव है ना, आपके दोस्त आप जिस सर्कल में रहते हैं, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। फर्स्ट कह रहे हैं मैं अच्छी ड्रेसिंग नहीं करता, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, मैं बोलता अच्छा नहीं हूँ या मैं काम अच्छा नहीं करता, तो मेरा दोस्त अगर मुझे इस तरह कहता है एक पॉजिटिव नोट में, पॉजिटिव वे में कि यार आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने, आप जूते अच्छे नहीं पहनते, आप कंघी नहीं करते, तो वो एक अलग चीज़ है, मुझे समझ आएगी और वो मुझे बेहतरी के लिए कहेंगे कि यार ख्याल कर लिया करें आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप किसी जगह उठते बैठते हैं, ये एक अलग चीज़ है। हाँ अगर कोई मुस्कुराते हुए आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है और आपका मजाक बना रहा है तो वहाँ पे उसको शट अप कॉल दें कि सोनिया ना अब नहीं, मतलब इस तरह आपने ना अपनी लाइफ में लाजमी, चूँकि देखें कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में कोई स्टेप लेते हैं, वो किसी भी किस्म का हो सकता है, वो आप सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाने के लिए हो सकता है, वो मतलब अपना कोई कारोबार शुरू करने के लिए हो सकता है, कोई छोटा सा कारोबार आप शुरू कर लें, तो उसी के स्टार्ट में अगर कोई दोस्त या कोई भी फैमिली मेम्बर आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो कर देता है कि यार तुम तो कर ही नहीं सकते, ये काम करने वाला है ये कौन करेगा, ये नुकसान होगा, नहीं ये काम दोस्तों आपने नहीं करना और ना ही किसी को करने देना है। और इसको आसान अल्फाज में बताऊं कि किसी के काम में टांग ना अड़ाया करें, मतलब अपनी जो लेग है वो ना अटकाया करें। चाहता तो कोई कहवे ना कि एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मनाएंगे, आपने कहना ना नहीं कहे मुझे बुरा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: क्या हाल चाल है भैया जी, आपके पहचाने में कौन बात कर
0: रहे हैं? पहचान लेते हैं जी आपको, सुनाएं कैसी जिंदगी गुजर रही है, चांद तारे भी टूट रहे हैं कोई नहीं?
1: नहीं,
0: चांद तारे आसमान में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ जो है बिल्कुल प्रॉपर सही जा
1: रही है अभी तक, अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल चेंज हुए। लेकिन
0: माशाल्लाह कितना अरसा होया तुहानू?
1: महीना हो चुका है।
0: अच्छा अभी दूसरा महीना, चलो 6 महीने बाद कॉल करना मुझे, ठीक है? चलें जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैं वैसे ही मैं एक ऑब्जर्वेशन कुछ चीज़ों की होती है ना वो बात करूँ। अच्छा रिमशा, आपने जवाब ये देना है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा आप खुश किस बात पे हुई हैं, लेकिन इसका जवाब आपने गुनगुना के देना है।
1: गुनगुना के
0: जी, गाने की तरह कोई भी तर्ज लगा दें कि रिमशा जिंदगी में आप सबसे ज्यादा किस बात पे खुश हुई हैं?
1: मुझे मेरे
0: शौहर
1: मिले, यही मैं बड़ी खुश हुई इस बात
0: से। नहीं ये इस तरह तो ना बताया, गुनगुनाना है कुछ, गुनगुना के बताएं कि मुझे मेरे
1: के।
0: हाँ
1: इतनी बेसुरी आवाज में,
0: कोई बात नहीं जी, स्टार्ट करें। 1 2 3 गो।
1: ऐसे कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं उनको प्यार से कद्दू बुलाती हूँ, ये कहूँ कि मेरी कद्दू मुझे मिल गई और मैं बड़ी खुश हूँ।
0: ये तो फिर वही डीड कर रही है ना, गुनगुना के आप उनको कद्दू कहें मूली कहें मुझे कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी कहें।
1: जिंदगी में मेरे कदम
0: कदम कोई हाल नहीं यार, बंदा कोई फूल नाम रख देता है, कोई चंबेली क्या नाम रख दिया आपने। रिमशा मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सिग्नल उनकी जानिब से ड्रॉप हो गया, चेक करो जी अंदाजा करे नाम क्या रखा है मेरे कद्दू। कोई हाल नहीं। एक बजकर 23 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपके मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक, बल्कि आज 2:15 तक हमारा साथ रहेगा। चूंकि हमने वो पोइट्री वाला सेगमेंट शुरू किया है तो उसमें हम 15 मिनट जो एक्स्ट्रा जो है दोस्त सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। और आज उनको एक लाइन में दूंगा, बल्कि वो अपनी पोइट्री चले वो जब सेगमेंट शुरू होगा फिर हम बात करेंगे। नेक्स्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ला लियो किड़े पास टूर पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
1: जी, वाली के मेरे साथ मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी।
0: चलें ड्रॉप हो गई, शुरू करें जी। कद्दू साहब को वेलकम करें।
1: हाँ एक मिनट कोशिश करते हैं,
0: करें कोशिश करें।
1: आपको मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बट तो नहीं रही?
0: नहीं नहीं बिल्कुल ओके आ रही है,
1: क्योंकि यहाँ पे मसला है ना, इस वजह से कॉल कट हो जाती है।
0: नहीं नहीं आ रही है, बोले आप
1: जी। मेरी जिंदगी में जब से मेरे कद्दू आए, मेरी जिंदगी इतनी हसी हो गई, इतना कॉफी।
0: चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना ठीक है।
1: और जाते जाते मैं बस सबको सलाम कहना चाहूंगी, जो मेरे जितने भी चाहने वाले थे मुझे सलाम कहते थे, मैं नाम लेके दे सलाम दे सकती हूँ?
0: आप दे दे जी, कॉल इतने दूर से किया तो हम मना कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दोबारा चूंकि उनकी आवाज मुझे ठीक आ रही है, मेरी आवाज अब तक नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया रमशा, आप लाहौर से थी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: सोफिया हैदराबाद से। क्या नहीं भाई, क्या हाल है? ठीक है,
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपकी सेहत ठीक है? मैं यही कहने वाला था सोफिया, चूंकि फर्स्ट टाइम हैदराबाद से इस तरह कॉल आई है। सोफिया आपकी सेहत ठीक है? आप टॉपिक सुना है आपने?
1: जी जी बिल्कुल टॉपिक सुना है।
0: तो आप गुनगुना के मुझे बताएंगी या?
1: नहीं नहीं नहीं मुझे गुनगुनाना नहीं आता।
0: चलें ट्राई कर ले, किसी को भी नहीं आता।
1: नहीं असल में मैंने कभी गुनगुनाया
0: नहीं है ना। नहीं आप बात ठीक कर रही हैं, चलें मैं
1: ऐसे ही आपको बता देती हूँ। मैं असल में इतनी उससे तो नहीं हूँ, मैं तो खुद अपने वालिद वालदा के घर पे रहती हूँ।
0: अच्छा,
1: मुझे तो बल्कि उधार की जरूरत पड़ती है, मैं तो अपनी खादी से ले लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है वो दे देती है मुझे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मैं किसी को उधार दूँ तो मेरे पास इतने है नहीं है, उनको वालिद और खर्चा उठाते ना सारा, शोर तो नहीं।
0: चले अल्लाह ताला आसानी
1: वो करते हैं सारा खर्चा वगैरह वालदा।
0: आपके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं, बहुत ढेर सारी दुआएं जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें, अपना आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ठीक है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया जी। जिंदगी में जी बहुत ज्यादा टेंशन हैं और जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं है। तो अभी आपने देखा एक कॉलर कितना मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि जब से मेरी जिंदगी में मेरे कद्दू आए हैं, मतलब उनके हस्बैंड जो हैं, जिंदगी मेरी बहुत हसीन होगी। तो वेरी नेक्स्ट कॉल जो है उनका आपने सुना, तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं है। वो मैंने एक दफ़ा आपको बताया था ना कि जब बारिश होती है तो हम जैसे लोग जो हैं पहाड़ों पे जाते हैं, करीब मार्गला हिल्स कह लें आप या मरी हमारे नज़दीक है, एंजॉय करते हैं बारिश को। तो उसी टाइम जो किसान है वो अपनी फसल में बेचारा परेशान होता है कि अगर जो सीजनल बारिश नहीं है जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो एक साइड पे हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है तूने बहुत प्यारा मौसम कर दिया, गर्मी ख़त्म हो गई है, उसी दौरान किसान हाथ उठा के कहता है कि अल्लाह ये मेरी फसल खड़ी है मुझ पर रहम कर। तो ज़िंदगी जो है ये हर किसी के ना अलग अलग जो हैं वो अल्लाह ताला ने जो आजमाइश का सिलसिला है या ज़िंदगी गुजारने के मामलात हैं वो सबके फ़र्क हैं। रब ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे, सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में जो सबसे अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है वो सेहत है। सेहत ना होए तो आप बिल्कुल, मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, मेरा लेफ़्ट साइड का जो कान शरीफ है, मतलब कान जो है, या चौथा पांचवा देने से मुझे बहुत तंग किया, मतलब किसी रीज़न से पानी गया है पता नहीं वल्ला आलम क्या है, इधर से आवाज़ नहीं आती, तो मुझे इतना अजीब फील होता है कि मतलब ड्रॉप्स डाल डाल के कोई इसका हाल नहीं हो रहा, एक दो दफ़ा डॉक्टर को भी चेक करवा, मुझे मतलब हर टाइम मुझे लगता है कि ना कोई अंदर बाजे बजा रहा है, कोई चीज़ खाऊं तो मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 10 बंदे खाना खा रहे हैं। तो सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम मॉनिटर नहीं करते। आँख नाक हाथ, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते। तो जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना ज़्यादा हमें देगा। समर फातिमा, आजकल फेबुलस शो, समर फातिमा आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने कहा शो अच्छा है, और आपने कहा जी वापस नहीं मांगती है, मुझे बहुत शर्म आती है, बाकी आजकल जो हालात कोई मांगता ही नहीं, अलबत्ता इन दिनों बाबा से डिमांड करती हूँ, दो दिन पहले उन्होंने तंग आके मुझे ATM कार्ड ही दे दिया कि जाओ अब सुबह सुबह मुझसे पैसे नहीं मांगना। और समरा ये समर फातिमा ये काम ना वाले साहब भी कर सकते हैं, कार्ड दे के पुत्र लाया जा।

0: फातिमा हमारे साथ जी मरी से मौजूद है। फातिमा बहुत शुक्रिया, आपने कहा जी कर्ज अदा करने के लिए मसनून दुआएं पढ़नी चाहिए, उनका एहतमाम करना चाहिए, आपने मैसेज किया मरी से। फातिमा बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। इसके अलावा कुछ देर पहले हमें पार्टिसिपेट किया था आमना खान साहबाद से, आप कहती हैं जी आप उधार जो हैं वो दे देती हैं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हों, और कर्ज़ देने के बाद थोड़ा सा टाइम देना चाहिए जिसको आपने कर्ज़ दिया है, और इसको कर्ज हंसना भी कहते हैं, और शायद जिस पर्सन को आपने कर्ज़ दिया है वो किसी रीज़न की वजह से आपको अदा ना कर सके। तो बहुत शुक्रिया आमना, आपने मैसेज किया, बहुत पॉजिटिव मैसेज है, और इस पर हमने भी आगाज़ में कहा था कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना चाहिए, और ख़ुद साख्ता चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं सोचनी चाहिए। 1:35 मतलब 1:35 हो चुके हैं, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे फिर इंशाल्लाह। 1:45 से ऑनवर्ड आपसे हमने बहुत अच्छी पोइट्री भी सुननी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, सर जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं और कॉल मिल जाती है फिर गुम जाते हैं, पता नहीं किधर चले जाते हैं, अल्लाह लियो किड़े पास टूर पे हो। 0511111001। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, ठीक है भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
1: मुल्तान से बात कर रही हूँ, राबिया।
0: मुल्तान से राबिया बात कर, आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बहुत शुक्रिया जी, मुल्तान में हमारी ट्रांसमिशन जाती, मुझे तो लगता है सो जाते हैं वहाँ पे एमसीआर वाले।
1: फोन करते
0: हैं? मैंने कहा ट्रांसमिशन आपको रेगुलर मिलती है वहाँ पे?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है गया, अच्छा टॉपिक सुना आपने?
1: हाँ जी, मैं आपके शो पहले भी सुनती रहती हूँ, जीशान भाई के भी सुनती हूँ, उनसे तो पर्सनल में भी बात हुई है, लेकिन दो दिन हो गए उनसे रब्ता कर रही हूँ, वो मेरे मुझसे बात नहीं कर रहे।
0: मैं जो है जीशान भाई को, जीशान भाई को आपका मैसेज हम पहुंचा देते हैं, आप अपने नाम से एक दफा ऑन एयर उनको बता दें कि आप क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे।
1: पता नहीं वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, हमारा थोड़ा घरेलू इशू था, मैंने उन्हें कहा था कि हल करते हैं, उन्होंने कहा था ठीक है मैं कर दूंगा।
0: चलें अल्लाह पाक आसानियां करेगा, मैं आपका
1: मैं बहुत परेशान हूं, मैं मैसेज भी कर रही हूं, उन्होंने ना मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया।
0: अच्छा चलें मैं जीशान भाई से बात करता हूं, अल्लाह पाक आसानियां करेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉल हम देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है। जीशान भाई बहुत ढेर सारे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, ब्लॉग ना किता करो, अल्लाह लियो। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल से, आपने मैसेज किया, आप कहते हैं ड्यूरिंग द ड्यूटी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे यहाँ दोस्तों में ये है कि हमने एक सर्टन अमाउंट रखी हुई है, मतलब 3,000 से कम अगर आपने पैसे एक दूसरे को उधार दिए तो वापस नहीं मिलते, 3,000 से ऑनवर्ड ऊपर जो है वो फिर ओवरऑल टोटल अमाउंट आप कहते हैं कि हम एक दूसरे को देते हैं। मतलब आपने कहा कि अगर मैंने अपनी दोस्त को पैसे दिए हैं जो 2600 रुपया बन रहा है तो ना मैं उससे वापस मांगूंगी और ना ही वो मुझे देगी, अगर मैं उसको 3,000 या 3100 रुपये दे दूँ तो वो मुझे सारे वापस करेगी। और ठीक हो गया जी, इट्स मीन कि आपने ना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मतलब इतने पैसे तो कोई होने दी वक्त ही कोई नहीं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहिबा, फीस कम लिया करें और अच्छे मूड से बात किया करें। ये वैसे एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों मेरी अपनी, आज एक तो गला बहुत ज़्यादा तंग करा, एक सेकंड। बस जब से चाय पीना थोड़ा कम किया ना गला मेरा बड़ा ख़राब है, कहता है कि कोई शय आंधी सी वो आजकल आ नहीं रही। दोस्तों ये मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बात की है कि डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं, अल्लाह ताला पहले तो बात है किसी को लेके ना जाए हॉस्पिटल में, ये पुलिस स्टेशन और थाना कचहरी में अल्लाह किसी को ना लेके जाए, हॉस्पिटल में ऑब्वियसली किसी न किसी रीज़न की वजह से आप लोगों को जाना पड़ता है। जब डॉक्टर बहुत मीठे अंदाज में आपसे बात करते हैं ना, प्यार से आपकी जो बीमारी है उसकी तशखीस करते हैं, तो यकीन जानिए कि आधा बंदा वहीं पर ठीक हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपसे सख्त लहजे में बात करेगा और आप सबसे पहली चीज़ आप क्या चुराना शुरू करेंगे, अपनी जो एक्चुअल पेन है या जो आपको प्रॉब्लम है वो आपने ठीक से बता पाते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। तो डॉक्टर साहिबा आप अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जब लेट नाइट भी अगर आप जाएँ तो बड़े सख्त रवैये से बात करते हैं, तो ये आप चीज़ اللہ کرے کہ اس وقت اگر کوئی بھی ڈاکٹر میری بات سن رہا ہے تو سونے تھوڑے میٹھے بول لانا بہت زیادہ لوگ ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو نیکسٹ کال ہم شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. چلو جی, یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں, ان کی کال ڈراپ. آئی تھنک آج کل نا آج کچھ سگنلز میں بھی تھوڑا بہت ایشو چل رہا ہے. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں لالا, کیسے آپ؟ اپنا بہت پیارا سا نام بتائیں.
2: گلزار احمد حیدرآباد سے.
0: گلزار احمد حیدرآباد سے. گلزار بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟
2: جی کب کے حالت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے کی مجبوری ہے, ہو سکتا ہے کوئی ہاسپٹل میں ہو یا بچے کی فیس دینی ہو یا اس کے اوپر کوئی اور مصیبت آ گئی ہے تو قرض دے دینا چاہیے.
0: ٹھیک ہو گیا, چلے بہت اچھی بات کی ہے میرے دوست, اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اچھا اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ جی آپ کی کال کا. 1:40 ہو چکے دوست, ایک بہت پیارا سا میں آپ کو ٹریک سنوانے جا رہا ہوں, واپس آئیں گے پھر ہم 1:45 سے آن ورڈ جو شاعری ہمیں دوست سنانا چاہتے ہیں ان کی شاعری ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور آواز جو ہے یہ ہے اس وقت جو آپ بیک گراؤنڈ میں ٹریک سن رہے ہیں, یہ تو فی الحال راحت فتح علی خان کی آواز ہے.

मैडम नूरजान की आवाज को जी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, मेरा बहुत फेवरेट ट्रैक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और ये भी हिस्ट्री रही है जी, किताबों में फूल रखना, मोर के पंख रखना।

0: मैडम नूर जान की आवाज में. दोस्तों आप ट्रैक सुन रहे थे कभी किताबों में फूल रखना, बहुत जबरदस्त ये ट्रैक. और ये जब भी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, मैं आप लोगों से इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि 90s के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यकीनी तौर पर अपनी किताबों में फूल भी रखे होंगे. मोर के पंख वो रखना और ये इमेजिन करना कि दो हो जाएंगे, बल्कि बाज़ औक़ात कुछ तो चीनी भी डालते थे कि इसमें जी चीनी देंगे तो ये एक से दो हो जाएंगे. हाँ, मैं लाइफ में ऐसे भी कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने आज भी उस टाइम उस दौर में अपनी किताबों में, सॉरी, एक डायरी का ज़माना हुआ करता था. लोग बहुत शौक से डायरी लिखा करते थे. डायरी में दोस्त मेरा फेवरेट, मतलब करीबी दोस्त कौन है, मुझे फिल्म कौन सी अच्छी लगती है और इस तरह की चीज़ें, रोज़ाना की रूटीन. वो ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा वो माहौल हुआ करता था. तो कुछ लोग रेगुलरली डायरी लिखा करते थे. तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके पास आज भी वो डायरी मौजूद है. वो फूल भी दिखाते हैं, गो के वो अब उस हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास उनकी कुछ यादगार चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं. अब हम जो कॉल शामिल करेंगे, आप लोगों ने जो शायरी सुनानी है, अपना नाम बताना है और जस्ट जितना छोटा कलाम होगा इतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल शामिल कर सकेंगे. और मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी. दोस्तों हफ्ते की रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है. मुस्कुराओ अगर सर पे छत, बदन पर कपड़ा और घर में दो वक्त का खाना है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो बांट कर खाओ. मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि ज़िंदगी जीने का है सलीका क्या, मुस्कुरा के ये कहो कि हमने ज़िंदगी से मुस्कुराना सीखा है. अल्लाह लो कितने पैसे टोर पे. आज की पहली कॉल. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन बात कर रहे जी?
1: मैं ना उससे फायदा बात कर रही हूँ, शायरी सुनानी है भाई आपको.
0: आपने शायरी सुनानी है मुझे? चलो सुनाए जी, सुनाए.
1: मैं तुमको देख के जीती हूँ हर पल, तुम पे मरती हूँ. मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो. मैं जब हाथ दुआ को खाती हूँ, अल्फाज कहीं खो जाते हैं. जब हाथ दुआ को खाती हूँ, अल्फाज कहीं खो जाते हैं. बस ध्यान तुम्हारा रहता है और अंत बहते रहते हैं. हर हाथ तुम्हारा पूरा हो, उस रब की मिन्नत करती हूँ. मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो. मुझे ठंडक रात नहीं आती, मुझे बारिश से खौफ आता है. पर जब से सुना है ये मौसम तुमको भाता है. अब जब भी सावन आता है, बारिश में भीगती रहती हूँ, कतरों में तुमको ढूंढती हूँ, बूंदों से तुम्हारा पूछती हूँ. मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो.
0: अरे क्या
1: मोहब्बत करते हो,
0: क्या बात है, बहुत प्यारा जी, बहुत शुक्रिया. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है.
1: और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिए. मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो.
0: अरे क्या बात,
1: मोहब्बत करते हो,
0: क्या बात है, बहुत प्यारा जी, बहुत शुक्रिया.

0: ಚಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಾಗುತ್ತೂರು ಕುಜನು ಕಾದಾನೆಯ ಮಾರಿಸುತ್ತೀಯ ಕುಜ ಸಜ್ಜನ ಕೀತದೂರ್ ಹೋಯಾ ಇಕ ಶಿಶಲ ಸಿಯೋರ್ ವೇಖಣ ವೇದಕ ಜಮೀತ ಚೂರ ಹೋಯಾ ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਦੂਰ ਹੋਇਆ
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ 1:56 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਗ਼ਜ਼ਨਫ਼ਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਿਆਨੀ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ
1: ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੇ
2: ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਉਂ
1: ਸਰ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਏ
2: ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਕਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੋ ਮੁਝਕੋ ਕੇ ਤੁਮ ਜੈਸਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੀਨੇ ਕੀ ਮੁਝੇ ਵੀ ਹੈ ਆਰਜ਼ੂ ਜੀਨੇ ਕੀ ਮੁਝੇ ਵੀ ਹੈ ਆਰਜ਼ੂ ਦੌੜਤਾ ਹੈ ਇਨ ਰਗੋ ਮੇ ਵੀ ਲਹੂ ਬਚ ਚੁਕਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਕਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੋ ਮੁਝਕੋ ਕੇ ਤੁਮ ਜੈਸਾ ਹੋ
1: ਤੁਮ ਜੈਸਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੌਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
3: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੋਇਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੇਂ
1: ਕੋਟਲੀ ਸੇ ਮੋਇਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੇ
3: ਮਾਨੇ ਬੱਚੇ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਾਰੇ ਹੋਰ
1: ਜੀ ਜੀ ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਏ
3: ਦਿਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਡਰ ਸਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸ ਖਾਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਡਰ ਸਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸ ਖਾਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਕੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਮੇਂ ਤੁਮੇ ਖੋਨੇ ਲਗਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਬਤਾ ਮੁਝੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਆ ਹੈ ਰਹਤਾ ਰਹਾ ਵੋ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੋ ਰੋਨੇ ਲਗਾ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਏ ਤੋ ਆਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਏ ਤੋ ਆਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ ਮਾਨੀ ਓੜ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਭੀ ਯਾਦੇਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਲਗਾ ਪਰ ਯੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਸਹਾਰਾ ਕਬ ਸੇ ਹੋਨੇ ਲਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਲਗਾ
1: ਕਿਆ ਬਾਤ
3: ਹੈ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ ਕਰੇ ਔਰ
1: ਮੁਸਕਰਾਓ
3: ਆਪਨੇ ਜਬ ਪੋਇਟਰੀ ਕਾ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋ ਉਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਅਦਾ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਅਦਾ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਂਖੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਆਖੋ ਮੇਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨ ਬੁਰੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਯਕੀਨ ਤੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਸਭੀ ਇਨਸਾਨ ਏਕ ਜੈਸੇ ਕਹਾਂ ਲਗਤੇ ਹੈ
1: ਕਹਾਂ ਲਗਤੇ ਹੈ
3: ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਪੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਤੋ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਰੇ ਲਗਤੇ ਹੈ
1: ਬੁਰੇ ਲਗਤੇ ਹੈ
3: ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਮੈਨੇ ਜੀਤ ਕੇ ਕਿਆ ਹਾਰਾ ਮਾਨੀ ਅਬ ਮੁਝੇ ਖੇਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਬੁਰੇ ਲਗਤੇ
1: ਹੈਂ ਬੁਰੇ ਲਗਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਬੁਰੇ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ 051-111-0101 ਔਰ 051-920-2540 ਪੇ ਆਪ ਲੋਗ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਤ ਕੇ 2 ਬਜ ਚੁਕੇ ਹੈ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸੇ 12 ਮਿੰਟ ਕਾ ਹਮ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ
4: ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਦਾਰ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਲਾਹੌਰ
1: ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੇ
4: ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਾਤ ਅਗਰ ਜਾਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ
1: ਸਰ ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਹਮਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਅਬ ਆਗੇ ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ
4: ਬਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ
1: ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ
4: ਉਹ ਅਭੀ ਅਨਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਾਲਰ ਥਾ ਪੁਰਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਜ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬਣ ਕੇ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਕਾਲਰ
1: ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਕੀ ਯੇ ਬਸ ਦੇਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ
4: ਇਸਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ ਗਈ
1: ਸਰ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਕਿ ਉਨਸੇ ਸਭ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ
4: ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸਕਾ ਰਾਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਕੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
1: क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
4: उसकी वजह ये थी कि उनकी शायरी और जो सॉन्ग थे ना उनके इंस्ट्रक्शन जबरदस्त थी। यानी कि हमारे कॉलर, मैं भी फर्स्ट कॉल मैंने की थी, तो यानी कि मेरी कॉल से या किसी और कॉलर से ये प्रोग्राम अच्छा हो जाए, हर गए सर ने उनका अपना ये मतलब रोल है।
1: क्या बात सर, इसमें कोई शक नहीं खुर्रम भाई।
4: हाँ तो पहली बात मैं आपको कर रहा हूँ कि कोई मदद के लिए आ जाए, उधार मांगने आ जाए ना, उसको खाली कभी ना लौटाए। झूठ बोलना इंसान ईमान से खाली हो जाता है।
1: बिल्कुल सही बात।
4: तो ये दौलत जो है ना पैसा, ये कभी किसी का नहीं बनता।
1: ऐसे ही बिल्कुल ऐसे।
4: आज आज हमारे पास है तो कल हो सकता है कि
1: किसी और को
4: हमारे पास ना हो। अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दे दी, आपके वसाइल हैं, तो जो भी मदद हो सकता है, उसका बेटा बीमार हो, बहन बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, ऐसी मजबूरी में हो, तो आस लेके आ गया है कि हमारी मदद करो या गुजारा दे दो। ऐसे ये जितनी भी आप मदद कर सकते ये ना ये हमें ये लौटा कर देगा।
1: जी जी,
4: सोचिए कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, बस।
1: बिल्कुल ऐसे सर, अब क्या सुनाएंगे?
4: बस यही थोड़ा सा
1: आपने दे दिया सर, बहुत शुक्रिया अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज जी। कुछ मजीद हम कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। 051-111-000 पर अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
5: आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी जब आप फुटबॉल का शो कर रहे थे।
1: फुटबॉल का शो कर रहे थे, ठीक हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे मेरे दोस्त?
5: जी सर मैं सुना देता हूँ, लेकिन मुझे ना कभी सुनाया नहीं है आपको। मैंने उस दिन बताया था कि मैं ब्लाइंड था।
1: जी जी, मैं उस दिन आपको बताया था कि आपसे तो अल्लाह ने जन्नत का वादा किया हुआ है।
5: पता क्या चक्कर है सर, अल्लाह का शुक्र है आप 30% ना कवर कर लिया।
1: अल्लाह पाक आपको जी इंशाल्लाह 100% रिकवरी होगी। कुछ भी छोटा सा सुना दे अगर दिल मानता है तो।
5: छोटा सा बेवफाई पे शेर है, अगर कबूल कीजिएगा
1: सर कर लेंगे।
5: हश्र में तेरा हश्र क्या होगा, मेरी जाने को अगर खुदा होगा, अगर खुदा तुमसे पूछ ले जो तुमने मेरे साथ किया है तो फिर तुम्हारा क्या होगा, अगर मेरी जाने खुदा होगा,
1: अगर मेरी जानिब खुदा हो गई। ये बड़ा ज़बरदस्त कलाम भी है, हदीका क्यानी ने उसको पढ़ा हुआ है, ये मैं कभी कभी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। बड़ा सख्त लाइंस है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है?
5: और कहीं भी एक पोर्ट्री एक ट्रैक प्ले कर दीजिएगा मेरे।
1: सर आप बताएं, मैं कोशिश करता हूँ। आगे लिस्ट बड़ी लंबी पी हुई है, बताएं बताएं ट्रैक मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी।
6: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
6: क्यानी भाई क्या हाल है?
1: अल्लाह का बहुत एहसान है, अपना प्यारा सा नाम बताएं।
6: अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
1: नूर हाशमी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं सर, क्या सुनाएंगे?
6: वेलकम वेलकम वेलकम। ये मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा सिर्फ चंद सेकंड
1: सर।
6: ये पोएट्री का आपने रखा हुआ टाइम, तो प्लीज दूसरे लोग जो है पोएट्री पे तवज्जो दे, दूसरों का वक्त ना जाया करें। ये मैं सिर्फ
1: सर बहुत
6: शुक्रिया, आपने क्लोज कर दिया।
1: जी जी बहुत शुक्रिया।
6: तो थोड़ी बहुत शायरी वो पेश की, अगर टाइम थोड़ा होता है।
1: जी जी ऐसे ही।
6: हाँ जी, मैं आज नजर शामिल करूंगा वसी शाह की कंगन।
1: जी जी, काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता।
6: काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से बहक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती तेरे होंठों की मैं हिद्दत से बहक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को चूमा करता, जब भी तू बंदे को बाह खोलने लगती जाना, अपनी आंखों को तेरे हुस्न से खीरा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे
1: हसीन हाथ का कंगन होता,
6: काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। दुआ में याद रखे,
1: बहुत शुक्रिया,
6: अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जी। ये कंगन वाला की स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा हिट हुई थी वसी शाह की ये गजल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी नजीर कियानी बोल रहा हूं।
1: नजीर कियानी साहब क्या सुनाएंगे सर?
2: सर पहले तो थोड़ी सी करेक्शन करूंगा क्योंकि ये हजारों लोग सुनते हैं तो शेर को थोड़ा सा मेरे भाई ने पढ़ा है लेकिन हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं इसकी करेक्शन कर दूंगा। ये है कि वो मेरी जानिब खुदा नहीं होगा, वो होता है तेरी जानिब खुदा होगा।
1: ये जैसे हाँ उन्होंने असल में शुरू जबकि मुझे पता चल गया था फिर मैं कहा चले वो अपना वो जिक्र भी करते
2: नहीं,
1: हैं।
2: नहीं ये जरूरी होता है ना क्योंकि फिर वो ये हजारों लोग सुन रहे
1: हैं। ऐसे ही है उन्होंने असल में ना अपना वो उन्होंने जब कहा था ना किसी बेवफा के नाम तो उन्होंने अपनी मेरे ख्याल से वो लिखने का वो किया था। बहरहाल जी नजीर साहब आप सुनाए सर।
2: तो वो ये है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा,
1: जान जाएगी और क्या होगा,
2: हशर में मेरा हशर क्या होगा, हशर में मेरा हशर क्या होगा, तेरी जाने बगैर खुदा होगा,
1: खुदा होगा।
2: तो
1: अच्छा नजीर साहब एक लाइन में बोलता हूँ इसको मुकम्मल करें, आपके जहन में इस टाइम क्या आता है कि वो सामने बैठा था मगर बात नहीं हुई,
2: वो सामने बैठा था मगर बात नहीं हुई, नजर से नहीं गुजरा ये
1: नहीं। इसका कोई आप जल्दी में कोई नेक्स्ट लाइन टैग कर सकते हैं कि मगर वो सामने बैठा था मगर बात नहीं हुई,
2: ये मेरा नसीब है।
1: क्या बात है,
2: ये मेरा नसीब है कि
1: ठीक हो गया नजीर साहब। आपने पहला जो मिसरे के जो पहले दो तीन लफ्ज है बड़े तगड़े पकड़े, चले फिर इंशाल्लाह काफी होती है। ठीक है
2: अच्छा जी जी सुन लीजिए ना, अभी तो मैंने अपना एक शेर सुनाने आप
1: जी जी सुनाए सुनाए।
2: वो इस तरह का ये वो दौर होता है ना, पता नहीं मैंने आपसे जिक्र किया या नहीं किया कि वो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब वो आदमी पर ये गुजरती है तो उस टाइम खुद ब खुद वो शायरी जो है ना बनती जाती है। तो कुछ नाराजगी चल रही थी तो मैं उनके घर गया तो उस पर मैंने लिखा कि शिद्दत दर्द से जब ना रहा गया तो मैं गया उनके दौलत खाने पर, शिद्दत दर्द से जब ना रहा गया तो मैं गया उनके दौलत खाने पर, मैं बहुत रोया बहुत चिल्लाया वो ना माने मेरे मनाने पर।
1: क्या बात क्या बात,
2: बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी हमारे साथ कौन मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल मिल गई है जी आपकी, कोई बात नहीं जी। हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है जी, 2:15 पे हमने साइन आउट करना है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि 1:45 पे ना हम टॉपिक क्लोज कर देते हैं, तो अब बस फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने पहले दिन ये सेगमेंट अनाउंस किया था तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं था, तो माशाल्लाह दूसरे तीसरे प्रोग्राम में जाके हुआ, तो ये आगे भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज मैं नहीं आ रही, अल्लाह लियो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है आपको?
7: अब आई है।
1: कौन बात कर रहे? आपकी आवाज ना थोड़ी सी कट रही है।
7: मेरी आवाज कट रही है? अब आ रही है
1: जी, अब आ रही है। आप नाम बता दें। डॉक्टर सादिया वान, क्या सुनाना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
7: आपकी
1: मैं समझ गया, डॉक्टर साहब क्या सुनाएंगे आप?
7: मैं क्या सुनूंगी, असल में ना कॉलेज कर करके मेरी पता है क्या होश उड़ गई, क्योंकि ना मेरी अटेंड हुई है और आगे से मुझे मेरी ही आवाज वापसी आ रही
1: है। अच्छा अच्छा, वो लगता है दरमियान में बंदा बैठा
7: है। तो मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, उसकी कॉल अटेंड हो रही है, मेरी कॉल से क्यों ऐसे हो रहा है? तो अच्छा जी कोई जो जो वो होना था वो हो गया। सो तो ये बहुत अच्छा था जिशान नासिर का, उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक रखा। अच्छा इसी तरह का टॉपिक रखना चाहिए ना, जो जिससे ना इंसान की थोड़ी वो क्या कहते हैं कि नॉलेज में भी थोड़ा मतलब इजाफा हो।
1: बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक
7: नहीं। उन्होंने तकनीक के बारे में और आपने भी रखा अच्छा टॉपिक रखा। फिर अब शायरी पे आके चले, मैं शायरी आपको सुनाती हूँ। अच्छा तकनीक की थोड़ी सी मैं बात करूंगी। तकवा जो है ना, तकवा देखें
1: डॉक्टर साहब आपकी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी दोबारा कॉल करें क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारे भाई, अपना बहुत प्यारा सा नाम बताएं।
8: मैं हाफिज मोहम्मद तौसीफ बात कर रहा हूँ कनाडा से।
1: कनाडा से हाफिज साहब, सर जजाकल्ला, आप समंदर पार से हमें सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इस वक्त टाइम क्या है
8: सर? इधर 5:12 हो गए हैं
1: सुबह के 5 से शाम के
8: 9 घंटे पीछे,
1: मतलब शाम
8: के 9 घंटे पीछे।
1: ठीक है, 9 घंटे पीछे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। कुछ सुनाना चाहेंगे आप?
8: सर जी वो है तो सही, काफी कुछ है
1: सर, कुछ थोड़ा सा
8: के क्यों ताना जन है आप मेरी सुस्त चाल पर, क्यों ताना जन है आप मेरी सुस्त चाल पर, मैं जिन पे चल रहा हूँ वो पत्थर भी तो देखिए।
1: अरे क्या बात,
8: इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है,
1: कोई कहकशां नहीं है। कमाल का मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। परदेश में जब आप रेडियो सुनते हैं पाकिस्तान से किसी का नाम, किसी आरजे का या कोई, तो हाउ इज फीलिंग, मतलब क्या फील होती है दोस्त?
8: मैं अक्सर जो है वो 10 से लेके 2 या 3 बजे तक, यानी कि रात के 10 से 2 से 3 बजे तक पाकिस्तानी रेडियो सुनता हूँ।
1: अच्छा,
8: और मोस्टली FM 101 ही सुनता हूँ।
1: क्या बात,
8: तो कभी कॉल मिल जाए तो बात भी हो जाती है। पहले भी कॉल मिली थी तो आपको, आपकी आवाज ही आ रही थी, वो इसी वजह से आ रही थी कि यहाँ पे रेडियो थोड़ा सा डिले चलता है। अच्छा। 1 मिनट पे सुन रहा होता हूँ।
1: जी जी जी, रेडियो पर
8: मैंने जवाब दी उतनी देर
1: चले, माजत में आइंदा ना ध्यान रखूंगा
8: कि अगर
1: इस तरह की कॉल है तो मैं थोड़ा वेट कर लूँ। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, परदेश से आप सुन रहे थे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़ जी। आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल देखते हैं जी, कौन मेरी खुशनसीबी होगी कि किससे बात होती है। 051-111-000-101, 2:13 हो चुके हैं और हम आपकी आखिरी कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे
9: हैं?
1: दोबारा बताएं नाम।
9: आई
1: एम सॉरी, समझ नहीं आ रही, नाम क्या आपका? मासी,
9: मासी।
1: रियली सॉरी, आप प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगे।
9: माफी,
1: पता नहीं मुझे माफी समझ आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। लास्ट नहीं लेते हैं, देखते हैं जी किसी आखिर बात हो जाती है तो। आई एम रियली सॉरी जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिर्फ माफी का सामने समझ आ रहा था कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल आप तमाम दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़बरदस्त फीडबैक दिया आपने प्रोग्राम के हवाले से। और यकीन जानिए कि मैं जब भी कोई टॉपिक अनाउंस करता हूँ उसके आगाज़ में आपसे कहता हूँ कि हमने इसको रिलीजियस से थोड़ा सा ना साइड पे रख के इंटरटेनमेंट के उसमें मामले में चलते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आज काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको फॉलो भी किया और टॉपिक हम 145 पे ना दोस्तों क्लोज़ कर देते हैं, तो उसके बाद का जो सेगमेंट है वो शॉर्ट है और हम, मेरी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को ना प्रोग्राम में शामिल कर सके। नज़ीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, चूँकि मेरी ये फील नहीं है पोइट्री के हवाले से, हमारे उस्ताद सजाद भाई, नासिर महमूद ख़ान सर, अब्दुल वहीद शेख साहब, सैयद अली हसनैन साहब, अभी रिसेंट जो लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो इनका ना काफ़ी अबूर है, तो वो उस टाइम ना एकदम पकड़ लेते थे अगर कोई गलत शायरी सुना रहा है या बोल रहा है। मैं उनको गलत इसलिए नहीं कहूँगा चूँकि उन्होंने पहले कह दिया था कि एक बेफवा के नाम है, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि। बहरहाल बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपने उसमें तसी की मेरी भी उनकी भी। इंशाल्लाह दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। मुझे गजनफर महमूद क्या नहीं कहते हैं, मेरा ताल्लुक जन्नत नज़ीर कश्मीर से है। आपसे हफ्ते में 3 दिन मुलाकात रहती है, जुमेरात और जुम्मा मेरा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जबकि हफ्ते की रात को रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपसे मुलाकात रहती है। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं अगर आप ढेर सारे दोस्तों के गाने नहीं प्ले कर सका तो आपने नाराज़ नहीं होना, वैसे मुझसे लोग बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं, तो आपने प्लीज़ इस हवाले से नाराज़ नहीं होना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक दुआ कि ज़िंदगी में कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे, अपने असाज़ा इकराम का हमेशा एहतराम करें, वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सब को अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करे, आमीन। एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करवाता रहता हूँ कि जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए तो मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन। ज़िंदगी शर्त है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते उस्ताद असद अमानत अली खान की आवाज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसको सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़।